फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप हमें सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन।
3: अब्राहम लिंकन अमेरिका के उन गिने चुने राष्ट्रपतियों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया एवं काले लोगों को गोरे लोगों के समान अधिकार दिलाने की प्रतिबद्धता की वजह से अपने प्राणों की आहुति दे दी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो एक दिन उनके आवास पर वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। उसी समय उनका एक अंतरंग उनसे मिलने आया। जैसे ही इस बात की सूचना मिली उन्होंने उस व्यक्ति को अपने कक्ष में बुलवाया। वह व्यक्ति उन्हें जूतों पर पॉलिश करते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसके मुंह से ये शब्द निकले, अरे आप अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे हैं? अब्राहम लिंकन ने कहा, मैं तो अपने जूतों पर पॉलिश कर रहा हूं, आप किसके जूतों पर पॉलिश करते हैं? उस व्यक्ति से हास्य और विनोद में यह बात कही, किंतु वह व्यक्ति उनकी बात सुनकर अत्यंत शर्मिंदा हुआ। आज की युवा पीढ़ी अपना कोई भी श्रम वाला कार्य करने में हीनता का अनुभव करती है। नवयुवकों को लगता है कि वे यदि स्वयं गिलास में पानी लेकर पी लेंगे या स्नान करने के बाद अपने कपड़े स्वयं धो लेंगे या अपने जूतों पर स्वयं पॉलिश लगा लेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी और उनकी तौहीनी होगी। इसी प्रकार का दूसरा प्रसंग बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं शिक्षाविद श्री ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन से संबंधित है। हावड़ा के प्लेटफॉर्म पर उतरा और कूली कूली की आवाज लगाने लगा। उस युवक के साथ जो सामान था उसे वह स्वयं ले जा सकता था, किंतु उसे लगा कि अपना सामान स्वयं ढोना उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। एक प्रौढ़ व्यक्ति नवयुवक के पास पहुंचकर पूछा कि उसे कहां जाना है। नवयुवक ने बताया कि उसे ईश्वरचंद विद्यासागर के यहां जाना है। इस पर उन प्रौढ़ व्यक्ति ने उस नवयुवक से कहा कि उनका घर स्टेशन के पास थोड़ी ही दूर है,

0: यही ईश्वर चंद विद्यासागर हैं, तो वह अवाक हो गया एवं अत्यंत लज्जित हुआ। वह युवक विद्यासागर जी के किसी मित्र का सिफारिशी पत्र लेकर नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे मिलने आया था, किंतु जब उसने देखा कि जिस व्यक्ति को उसने कूली समझ रखा था वही ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, तो वह अत्यंत हतप्रद हो गया। वह निराश हो गया एवं इस भय से कि अब तो उसे नौकरी मिलने से रही उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले। उसने अपने को संयत किया और पत्र उनके हाथों में दिया। उस नवयुवक ने नौकरी प्राप्त करने की आशा त्याग दी और उसने विद्यासागर जी से क्षमा याचना करते हुए अपने वापस जाने की अनुमति मांगी। इस पर विद्यासागर जी ने उस युवक को सांत्वना दी एवं उसे रुकने के लिए कहा। विद्यासागर जी ने उस युवक की नौकरी लगवा दी। इस प्रेरक प्रसंग से हमारी नई पीढ़ी को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता, दूसरों पर आश्रित रहना बड़प्पन की निशानी नहीं है। अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए पराश्रित होने के स्थान पर स्वावलंबी होने में ही महानता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम संपन्न होता है FM बैंड पर। यह आकाशवाणी का रैगड़ केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे अनूप जलोटा द्वारा गाए भजनों को।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाश

0: आकाशवाणी आइए।
1: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा द्वारा गाए भजनों को।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आपने सुना अनुज जलूटा द्वारा गाए भजनों को, और इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच।

किसान भाई मन राम राम, जय जुहार। आज की चर्चा में हमन जानबो कि नवजात जो बछड़ा बछिया रहते ओमन के देखभाल प्रबंधन कतका जरूरी होते। जन्म के बाद संगवारी हो बछड़ा जो बछड़ी रहते ओमन के नाक और मुंह ला साफ करना रहते। एक पतली परस से वो पूरा बंधाए रहते जन्म के पहले, तो जब भी जन्म लेते तो ओकर बाद नाक मा और मुंह मा एक परत जमे रहते। वो परत ला तुरते निसारना चाहिए ताकि ओकर श्वास के प्रवाह बने। नवजात बछिया है या बाछी है या जो भी बछड़ा है ओकर छाती में धीरे धीरे मालिश करना चाहिए जेकर ले सांस लेहे मा वाला आसानी हो। संग मा ओकर पूरा शरीर ला भी अच्छा तरह ले साफ करना चाहिए। वैसे तो जो भी गाय रहते भैंस रहते ओमन अपन के जीभ के माध्यम से ओकर पूरा सफाई करते। अगर नहीं हो पाते तो आप मन कपड़ा से भी ओला पोछाई कर सकता हो, नहीं तो प्राकृतिक रूप से संगी हो महतारी है ओकर बछिया के जो माँ रहते और प्राकृतिक तौर से ओला साफ करते। और संग मा मुंह में दो ठन उंगली ला डालना चाहिए जीभ मा ताकि ओहर दूध पिए के कहना चाहिए प्रयास करे और दूध पिए बर ओकर से फिर आसानी हो जाते। फिर ओकर बाद ओकर काढ़ी ला हमन लगा देते मुंह मा तो भी आसानी ले ओहर पीते। और जो भी नाल रहते ओला 2 इंच की धुरिया ले धागा के साथ जो है बांध देना चाहिए और बाकी ला जो है का करना चाहिए संगवारी काट देना चाहिए और जो है टिंचर या आयोडीन लगा देना चाहिए ताकि ओमा संक्रमण ना हो, नहीं तो कहा होते बोल रहे है फूल जाते। जन्म के आधा घंटा के भीतर नवजात पशु ला ओकर जो खीस रहते तेला पिलाना चाहिए। विशेषज्ञ मन कहते हैं खीस के मात्रा ला बच्चा के वजन के 1/10 भाग के बराबर होना चाहिए जेकर से संगवारी हो ओला का हुई आसानी से वो डाइजेशन कर सकी पाचन कर सकी। और 1/10 भागला दिन में 3 से 4 बार बांट के देना चाहिए। बछड़ा या बछिया हावी ओकर उचित विकास पर 2 माह के

उम्र तक दूध ही पिलाना चाहिए। तो एकर से का होते, बढ़िया हष्ट पुष्ट होते। और तीसरा, जब सप्ताह लगते बछिया या बछड़ा के, तो उमा कृमि नाशक दवा देना चाहिए। कृमि नाशक दवा में डॉक्टर के सलाह से आप मन दे सकता हो। और इमला ओ बेरा में कोमल घास जैसे कि हे भी दे सका था, या जो कहना चाहिए कोमल रहे थे ओला थोड़े थोड़े देना चाहिए ताकि ओला खाए बर सीखे। नवजात जो बछड़ा रहते या बछिया रहते ओला संगवारी 3 महीना के आयु पूरा हो के पूर्व तक ओला चिकित्सक के सलाह के अनुसार से काम करना चाहिए। थोर मोर भी अगर हल्का फुल्का भी संक्रमण दिखा थे, वह दूध पिए के मन नहीं करा थे, कान ला और माए है, मुड़ी ला और माए है, तो हमला ओला डॉक्टर ला बताना चाहिए। नवजात जो बछड़ा या बछड़ी रहते ओला सुरक्षित वातावरण में रखना चाहिए। काबर की आज के अगर बछिया या बछड़ा ला अगर बेहतर देख रेख नहीं करबो तो भविष्य हमन उम्मीद नहीं कर सकन कि अच्छा उम्र से हमन लाभ मिल सके हमला। नवजात जो बछड़ा रहते या बछिया रहते ओला खीस जरूर पिलाना चाहिए। नवजात जो बच्चा होते ओकर बर बहुत ही वह लाभदायक होते, रोग बीमारी ले लड़े के क्षमता बढ़ाते, रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते और प्राकृतिक रूप से वह संगवारी हो टीकाकरण के काम करते। काहर करते जो खीस रहे थे, जो गाढ़ा पीला दूध रही थे, खीस संगवारी हो जो नवजात पशु लोग प्राकृतिक रूप से मिलते, प्रकृति में अमूल्य उपहार हवे महतारी के डहाल ले वह मिलते, तो संगवारी हो ओमा जो सामान्य दूध रहते ओकर तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन और 10 गुना विटामिन ए प्रचुर मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते, ये विशेषज्ञ मन कहते हैं। और एकर विकास जो है संगवारी हो देखा जाए तो जोन पशु मन, जोन बछिया बछड़ी मन, ओमन माँ के प्राकृतिक दूध के ज्यादा सेवन करते हैं, खीस बढ़िया पीते हैं, तो ओमन के रोग प्रतिरोध क्षमता भी अच्छा देखा गई से। तो नवजात पशु ला खीस पिलाना है, बछिया के रोग के लड़े के क्षमता और शक्ति ला बढ़ाना है। तो संगी हो आप मन भी ये काम ला अपन के पशुशाला में पशु मन में जरूर ध्यान देख करके नवजात पशु ला जो खीस होते गाढ़ा पीला दूध होते ओला जरूर पिलाव और सुरक्षित रखो। और कुछ भी समस्या होते तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेवा। कृषि

अभी आप सुन रहे थे कृषि मंच, ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे।

कुछ ही पलों में 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। देश गान होगा 6:50 पर। संस्कृत समाचार 6:55 पर। 7:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 7:05 पर। झरोखा कार्यक्रम का वक्त होगा 7:35 पर, जिसमें चर्चा का विषय होगा सांप काटने पर न घबराएं, समय पर जरूरी कदम उठाएं। गांधी चर्चा आप सुनेंगे 7:45 पर। समाचार प्रभात सुबह 8:00 और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिलिए आप सुनेंगे 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे 9:00, 11:00 और 12:00। 9:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:00, 11:00 और 12:00। ये कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप पुनः सुनेंगे 11:55 पर।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। भजन संध्या आप सुनेंगे 5:10 पर। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे शाम 5:30 पर। हिंदी में समाचार शाम 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए आप सुनेंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे 7 बजे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर। विविध संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। रजनीगंधा कार्यक्रम का वक्त होगा रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम संबंधी जानकारी में बस इतना ही। पुनः आप 7:55 पर कार्यक्रम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की कड़ी संख्या 110। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी, घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर। और इसी के साथ रामचरितमानस गान संपन्न होता है। FM 100.7 में कस्पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत का कार्यक्रम देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान, और इसी के साथ देशगान अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति

0: सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod.
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, गीतों के भी कई रंग हैं, कभी चंचल, कभी सादगी से भरी, कभी मनभावन। हर रंग की अपनी विशेषता है और आज की सुबह में चित्रपट कार्यक्रम रूपी इंद्रधनुष में हम ऐसे ही गीतों के रंगों से सजा कर लाए हैं और इन्हीं रंगों को आइए चुनते हैं और आपको सुनाते हैं मनमोहक गीत। श्रोताओं, सुनिए फिल्म फकीरा का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, 22 स्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
8: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

ईद में अगला गीत सुनिए फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से, जिसे गाया है अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत है।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: श्रोताओं, अच्छा गीत वही जो हमारे श्रोताओं के मन को भाए, और इस वक्त हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए का गीत, जिसे गाया हेमलता ने। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म ये वादा रहा का गीत, जिसे गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। गुलशन बावरा के लिखे बोल थे, आरडी बर्मन का संगीत था। चित्रपट संगीत का ये सुरीला कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:35 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम झरूखा।

नमस्कार सुप्रभात श्रोता साथियों, कार्यक्रम झरोखा में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आपकी रेडियो साथी रिडनेश्वरी यादव। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी जानकारी पर जिसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, बरसात का मौसम है, खेत खलिहान घर का आंगन जहाँ हम बेफिक्र बैठे हों या काम कर रहे हों और वहाँ अचानक सांप आ जाए तो हम उसे देखकर घबरा जाते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात तब होती है जब सांप काट लेता है, और उस वक्त इंसान बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उस समय हर पल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जहरीले सांप ने अगर काटा है तो जहर तेजी से खून के माध्यम से शरीर में फैलने लगता है। इसलिए उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाना ज़रूरी हो जाता है। और उस समय घबराने के बजाय व्यक्ति को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, उसे सोने नहीं देना चाहिए और अनावश्यक रूप से चलने फिरने से भी मना करना चाहिए। सांप ने जिस जगह को काटा है उस जगह पर कोई भी घरेलू उपचार ना करें, ना ही उस जगह को काटें। व्यक्ति को तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। झाड़ फूंक में समय न गंवाएं मित्रों, क्योंकि पल पल भी कीमती होता है और एक पल भी गंवाना यानी पीड़ित की जान को खतरे में डालना। मित्रों, घटना के बाद सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश करके अपनी सुरक्षा को खतरे में न डालें और ऐसी घटना से बचने के लिए अपने आसपास सफाई रखें। रात में बाहर निकलें तो अपने पास टॉर्च जरूर रखें। कचरे के ढेर से सावधान रहें और जूते पहनने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लें। मित्रों, बच्चों को भी समझाएं, यदि सांप दिखाई दे तो उसके पास भी नहीं जाना है, उसे छेड़ना या पकड़ना बिल्कुल नहीं है। घबराहट में लिया गया फैसला समय भी गंवा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति आए तो शांत रहें, पीड़ित की गतिविधि कम रखें और तुरंत चिकित्सा सहायता लें। श्रोता साथियों, सांप काटने पर ना घबराएं और समय पर जरूरी कदम उठाएं। अब कार्यक्रम में है एक गीत सुनने का वक्त, तो सुनिए ये गीत।

अब कार्यक्रम झरोखा से डिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झरोखा। ये कार्यक्रम समाप्त होता है। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा। उससे पहले सुनिए ये संदेश।
2: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: गांधी चर्चा में आज प्रस्तुत हैं प्रार्थना की महत्ता पर बापू के विचार।
1: मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक प्रार्थना में दिलचस्पी न होने का एक कारण व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता का अज्ञान हो सकता है। व्यक्तिगत प्रार्थना से ही सामाजिक प्रार्थना की व्यवस्था हुई है। व्यक्ति को प्रार्थना की भूख न हो तो समाज को क्यों कर हो सकती है। सामाजिक प्रार्थना का उपयोग भी व्यक्ति के लाभ के लिए है। व्यक्ति के आत्मदर्शन में, आत्मशुद्धि में सामाजिक प्रार्थना सहायक होती है। अतएव यह आवश्यक है कि सब कोई व्यक्तिगत प्रार्थना के महत्व को पहचान ले। जहां बच्चा समझने लायक होता है वहां माता तुरंत ही उसे प्रार्थना सिखाती है। सारे धर्मों के लिए यह सामान्य वस्तु है। इस प्रार्थना के लिए दो समय स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं, अर्थात सवेरे उठते समय उस अंतर्यामी को याद किया जाए और रात को सोते समय उसका ध्यान किया जाए। इस बीच जागृत स्त्री पुरुष अपने प्रत्येक क्रिया को करते समय अंतर्यामी को याद करेंगे, उसे साक्षी रूप मानेंगे। ऐसा करने वाले व्यक्ति से बुरा कृत्य तो हो ही नहीं सकता और अंत में उसको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वह अपने प्रत्येक विचार का साक्षी ईश्वर को मानेगा, उसे स्वामी बनाएगा। यह शून्यवत होने की स्थिति हुई। इस तरह जिसके समक्ष सारा समय ईश्वर विद्यमान रहता है उसके हृदय में राम वास करता है। ऐसी प्रार्थना के लिए खास मंत्र अथवा भजन की जरूरत नहीं होती। हालांकि प्रत्येक क्रिया के आरंभ और अंत के लिए मंत्रों का विधान किया गया है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। हमें तो चाहे किसी भी नाम से, किसी भी तरह, चाहे किसी भी स्थिति में ईश्वर को याद करना है। ऐसा करने की आदत बहुत कम लोगों की पड़ती है। यदि बहुतों को ऐसी आदत हो तो जगत में पाप कम हो जाए, मलिनता क्षीण हो जाए और पारस्परिक व्यवहार शुद्ध हो जाए। ऐसी शुभ स्थिति को प्राप्त होने के लिए प्रत्येक मनुष्य को, जैसा कि मैंने कहा है, दो समय तो निर्धारित करने ही चाहिए और उसे इसके लिए अन्य समय भी निर्धारित कर लेना चाहिए और उसमें नित्य इजाफा करते जाना चाहिए, जिससे कि अंत में हर सांस में राम का नाम निकलने लगे। इस व्यक्तिगत प्रार्थना में तनिक भी समय नहीं लगता। उसमें समय की नहीं, जागरूकता की जरूरत है। जैसे आंख मूंदने में समय नहीं

लगता, वैसे व्यक्तिगत प्रार्थना में भी समय नहीं लगता। अपितु जिस प्रकार हम जानते हैं कि पलक अपना काम करती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी निरंतर प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले को याद रखना चाहिए कि जिसका हृदय मलिन है, वह उस मलिनता के रहते हुए प्रार्थना नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि प्रार्थना के समय उसे मलिनता का त्याग करना ही होगा। जैसे कोई मनुष्य किसी के सामने कोई मलिन कार्य करने से शर्माता है, उसी तरह उसे ईश्वर के समक्ष भी मलिन कार्य करते हुए शर्माना चाहिए। लेकिन ईश्वर तो सदैव हमारे प्रत्येक कार्य को देखता है, विचार को जानता है, अतः ऐसा एक भी क्षण नहीं जब उससे छिपकर कोई भी काम अथवा विचार किया जा सकता हो। इस तरह जो मनःपूर्वक प्रार्थना करेगा वह अंततः ईश्वरमय हो जाएगा, अर्थात निष्पाप हो जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित की जाएंगी।

8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिली आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से 8:30 पर। 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम। पुनः विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे 11 बजे और 12 बजे। ये कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर एवं 11:55 पर। प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। प्रायोजक होंगे CF वन विभाग सरगुजा। भजन संध्या का वक्त होगा शाम 5:10 पर। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये समाचार आप सुन सकेंगे। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। आप सुनेंगे 6:20 पर प्रादेशिक समाचार। आप प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 6:45 पर। लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग। आप सुनेंगे शाम 7 बजे चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी किसानों की उन्नति में मददगार मशरूम की खेती। आज की नसीहत में आप सुनेंगे सफलता के लिए कृषक किसान उत्पादक संगठन से जुड़े। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। यार फिल्म गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 8:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9 बजे। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की

0: ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और एआई का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC

0: और दो सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा उत्तरों को चुनौती

0: हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक जिनकी आवाज से भारतीय फिल्म संगीत के कई गीत सजे हैं। उनकी आवाज अपने आप में सबसे अलग है। गीतों की तादाद पर नहीं बल्कि गीतों की गहराई पर बात की जाती है, लेकिन हर गीत में सभी सुनने वालों के दिलों को छू जाने की ताकत है। ऐसे गायक हमारे साथ हैं श्री सुरेश वाडकर जी। आकाशवाणी की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: सुरेश वाडकर जी, जिनकी आवाज सन 1977 में पहली बार सुनी गई, उसके पहले सुरेश वाडकर जी संगीत से किस तरह से जुड़े, हम जानना चाहेंगे।
1: एक्चुअली 4 साल की उम्र से मुझे गाना सीखने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर ने ये चीज जान ली थी कि ये ठीक ठाक गाता है बच्चा, तो इसको सिखाना चाहिए। तो तब से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता यही है कि सीखता गया। और फिर 8, 9 साल की उम्र से मैं पंडित जियालाल वसंत जी, जो मेरे गुरु रहे, उन्होंने मेरी परवरिश की, गाना सिखाया, मेरी पढ़ाई लिखाई की। आज जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। तो ये सिलसिला सीखने का अभी भी जारी है। अपने आप को अभी भी मैं विद्यार्थी के रूप में ही रखा हुआ है मैंने, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया जो है ये कभी खत्म नहीं होती।
0: हमने सुना है कि आपको पहलवानी का भी शौक था।
1: हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मेरे फादर पहलवान थे तो बचपन में हम लोग अखाड़े में भी जाया करते थे, मैं, मेरा बड़ा भाई परशुराम। तो उसकी वजह से कुश्ती का भी बड़ा शौक है मुझे। खैर, बाद में तो हम लोग, मैं तो गाने बजाने में निकल गया, मगर कुश्ती देखने जाया करता था मैं, क्योंकि मेरे फादर ने अपने जमाने में बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां खेली है और उनको म्यूजिक का भी बड़ा शौक था। उनकी वजह से ही मैं गाने में आ गया।
0: संगीत के साथ साथ दूसरे शौक वाली बात तो हमने सुनी है, लेकिन पहलवान और संगीत, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लगता है। तो आपने कुश्ती कभी लड़ी कि नहीं?
1: कुश्ती बचपन में लड़ी है, वैसे कुश्ती तो नहीं, मगर लड़ाई तो घर में बीवी के साथ होती है।
0: सुरेश जी, हमने सुना है कि भाभी जी भी संगीत से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी गायिका है।
1: जी जी, बहुत अच्छा गाती है और आजीवासन को संभालने में मेरी बड़ी बहन प्रेम और पद्मा, इन सब का मेरे साथ बड़ा सहयोग है। मेरी बड़ी बहन तो उसकी छत्र छाया में ही हम लोग आजीवासन चला रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ तैयार हो रहे हैं और ऑलरेडी वो प्रोफेशनली गा भी रहे हैं बाहर, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: आपने अपनी धर्मपत्नी के साथ में कभी गाया होगा?
1: मैंने गाया है, मेरे साथ कभी कभी प्रोग्राम्स में भी गाती है। जल्दी से तैयार नहीं होती क्योंकि वो बोलती है कि मैं ड्यूएट ही गा सकती हूँ आपके साथ मैं, मगर अभी इन दिनों वो खुद भी प्रोग्राम्स करने लग गई है तो अच्छा लगता है।
0: कभी आपका मन नहीं किया होगा कि फिल्म में भाभी जी को साथ में गवाया जाए?
1: हाँ, मेरा मन बहुत करता है, मगर मैं अपनी तरफ से इसलिए सजेस्ट या इंसिस्ट नहीं करता। तो मैं मेरे दोस्तों को जो भी गवाना चाहता

0: हैं। मैं बोले तुम भाई सुनो उसको, तुमको अगर लगता है कि वो गा सकती है तो तुम जरूर बुलाना। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं कहना भी नहीं चाहता हूं।
1: किसी गायक कलाकार के लिए सबसे पहले मिलने वाला जो ब्रेक होता है वो उसके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो हम आपके जीवन में आपकी गायकी फिल्म इंडस्ट्री से किस तरह से जुड़ी इसके बारे में जानना चाहेंगे।
0: ये सुरसिंगा संसद का एक कंपटीशन हुआ था 76 में, जिसमें मैंने भी पार्ट लिया था। तो वहां पे जजिस में रविंद्र जैन साहब थे, जयदेव जी थे, सुधीर फड़के जी थे, शिव जी हरि जी थे, हृदयनाथ मंगेशकर जी थे। तो वहां पे मुझे मदन मोहन अवार्ड मिला था। तो रविंद्र जैन साहब ने स्टेज पे आके उसी वक्त अनाउंस किया कि इसका जो विनर होगा मैं उसको पहला ब्रेक दूंगा। तो विद इन 3-4 मंथ्स पहली फिल्म बन रही थी राजश्री प्रोडक्शंस की, जिसमें उन्होंने सारे गाने मेरे से गवाए। आज जो कुछ मैं हूं रविंद्र जैन साहब के आशीर्वाद की वजह से हूं, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से हूं। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। स्ट्रगल जिसको बोलते स्ट्रगल पीरियड वैसे मेरे जिंदगी में नहीं रहा, अभी स्ट्रगल है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट या अभी का जो जमाना जैसा चल रहा है उस हिसाब से ऐसे लगता है कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं।
1: आपके जीवन का वो पहला गीत आपको याद होगा,
0: वो था बृष्टि पड़े टापुर टुपुर।
1: हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप गा के सुना दें।

से खिल खिल आह आह बृष्टि पड़ी टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, बृष्टि पड़ी टापुर टुपुर, टापुर टुपुर।

देव जी के पास था एज एन असिस्टेंट, तब वो तुम्हारे लिए के गाने हो रहे थे। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे, तो मेरे सामने ही वो गाना रिकॉर्ड हुआ था। बाद में फिर फॉर्मली मेरी जो मुलाकात हुई, जब दादू रविंद्र जैन साहब मेरा रक्षक फिल्म कर रहे थे तो उसके गाने चल रहे थे, तो मैं गया था सेट पे, तो दादू ने मुझे मिलाया, जिसको बोलते हैं औपचारिक रूप से। तो सुरेश है मेरे पास, गाया है, बहुत अच्छा गाता है और आपके कोल्हापुर का है, तो बहुत खुश हुई। मेरे साथ बात कर रही थी काफी देर तक, मुझे कहा उन्होंने कि तुम्हारे जो भी गाने रिकॉर्ड हुए तुम लेते आना, मुझे सुनने हैं। तो मैं लेके गया, उन्होंने सुना, और मेरे सामने जितने भी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उन सबको उन्होंने फोन किया कि मैं लड़का भेज रही हूँ, आप उसको सुनिए और जरूर चांस दीजिए, बहुत अच्छा गाता है। और विद इन मेरे ख्याल से 2 मंथ्स में वो गाना क्रोधी फिल्म का रिकॉर्ड हुआ, जिसमें लता जी के साथ मैं पहली बार गा रहा था।

0: कैसा लग रहा था? मैं तो ऐसे लग रहा था कि नीचे पांव है ही नहीं, इतना घबराया हुआ था मैं। मगर दीदी ने इतना प्यार से मुझे कहा कि अपने दिमाग को शांत रखे, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं वैसे गाओ, सब ठीक हो जाएगा।
1: गाना खत्म होने के बाद में लता जी की क्या अभिव्यक्ति थी?
0: बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और उसके बाद फिर मैं मेरा दीदी के साथ फिर मैं हृदयनाथ जी के पास भी गाया, क्योंकि घर में उतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर उनके घर में खुद है, तो जाहिर है उन्होंने भी, और चूंकि मुझे उन्होंने सुना भी था कंपटीशन में, तो बस गाने होने लग गए, फिर आप सब तक मैं

0: बात है, क्या बात है सुरेश जी, वाकई दिल को आपने छू लिया, या कह सकते हैं कि सुनने वालों को लूट लिया आपने इस गीत को गाकर।
1: मैं भाई साहब बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी में जो भी म्यूजिक डायरेक्टर आए, उन्होंने उनके बने हुए बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने मुझे दिए उन्होंने। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जिसकी वजह से मैं नंबरिंग नहीं कर सकता हूँ। अब ये ठीक है, यहाँ पे कौन सा गाना क्यों और कैसे पॉपुलर होता है, जिस गाने पे बहुत आपको गर्व होता है वो कब आता है कब चला जाता है ये भी नहीं पता चलता। तो ये सब कुंडलिनी या कुंडली उस गाने की अच्छी होनी चाहिए, उस हिसाब से वो पॉपुलर होते हैं। और नंबर मेरे ख्याल से मेरे माई बाप जो सुनने वाले हैं उन्होंने देने होते हैं।
0: आपको एक फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, तो उसके बारे में बताइएगा।
1: सिंधुताई सपकाळ करके एक फिल्म बनी है मराठी में, तो उस गाने के लिए मुझे तो लगा था कि मुझे कभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बार मेरे हाथ में आते आते छूट गया, वो आप कह सकते हैं गमन के टाइम पे भी छूट गया, लेकिन के टाइम पे भी छूट गया, और चांदनी के टाइम पे भी निकल गया, प्रेम रोग के टाइम पे तो निकल गया ही वो, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। जिन गानों की वजह से मुझे आज भी लोग जिंदा रखते हैं वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, और मेरे राष्ट्र के लोग वो प्यार देते हैं, तो उसका बड़ा इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है।
0: आज सुरेश वाडकर जी क्या कर रहे हैं?
1: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है, आजीवासन मेरा बहुत क्या कहते हैं ना उसका काफी नाम है, जहाँ पर हम लोग नई पौध तैयार कर रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट्स भी काफी आगे बढ़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए मैं आजीवासन से बहुत अच्छे अच्छे नगीने पेश करना चाहता हूँ। भगवान आजीवासन को और आजीवासन में जो भी मेरे सारे मेरी दीदी है, मेरे बाकी टीचर्स हैं, मेरी मिसिस है, सबको मेहनत करने की और उनको आगे बढ़ाने की सुबुद्धि और ताकत दे दे, यही भगवान से प्रार्थना करूंगा।
0: इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में आप आए हैं कार्यक्रम देने के लिए, इस विश्वविद्यालय के बारे में और हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत प्रेमियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: एक तो भारत का सबसे बड़ा ये महाविद्यालय है जो म्यूजिक का महाविद्यालय है, फाइन आर्ट्स का विद्यालय है, और वो एक अनोखा और अकेला है, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा भी महाविद्यालय भारतवर्ष में है जो इस चीज को आगे बढ़ाने में हमारे स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं जितनी भी सेवा होगी मैं करके उनका आशीर्वाद लेके जाऊंगा।
0: आदरणीय सुरेश वाडकर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी आवाज की खुशबू हमेशा यूं ही सुनने वालों के कानों तक फैलती रहे और आपके गीत हम यूं ही सुनते रहें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सुरेश वाडकर से दीपक हटवार की बातचीत। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: वादा।
0: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: फिल्म का नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, पीयूष मिश्रा की आवाज़ थी।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी मां सगुना अभिनेत्री थीं। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।
1: मस्त बहा

कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

यहां आ रहा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थीं और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का ये गाना

कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।

0: नागपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उत्तराखंड के चमोली में

0: निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर परीक्षा निरस्त कर घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई। और जनजातीय कारीगरों को मंच प्रदान करने आज धमतरी में कारीगर सूचीबद्धता मेले का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में पिछले सप्ताह सुरंग हादसे में लापता दोनों श्रमिकों के शव मंगलवार को बरामद कर लिए गए। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों शवों को बरामद किए जाने के बाद करीब 3 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सुरंग में 13 अगस्त की शाम हुए हादसे के बाद से विभिन्न एजेंसियों द्वारा युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा तलाश और बचाव राहत अभियान भी समाप्त हो गया। सुरंग से बरामद हुए शवों की पहचान झारखंड के खूंटी जिले के 31 वर्षीय लुकास टोपनो और छत्तीसगढ़ के चेतन पोयाम के रूप में हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में कोंडागांव जिले के 4 श्रमिकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये तथा हादसे में घायल दोनों श्रमिकों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे में कोंडागांव जिले के ग्राम धनसुली के 2, मदनार के 1 और दहीकोंगा के 1 श्रमिक की मृत्यु हुई है, जबकि जिले के 2 श्रमिक घायल हुए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने तत्काल जांच समिति गठित करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय ने परीक्षा निरस्त कर 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। मंत्री ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरस्त परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अभिलक्ष लेखी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य किसानों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। कल रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं और राज्य में तिलापिया क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। श्री लेखी ने बताया कि राज्य में मत्स्य क्षेत्र की परियोजनाओं पर करीब 900 करोड़ रूपये व्यय और स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन और निर्यात क्षमता मजबूत करने के निर्देश दिए। जनजाति कारीगरों, स्व सहायता समूहों, वनधन विकास केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों और स्थानीय उद्यमियों को मंच प्रदान करने के लिए आज धमतरी के आजीविका महाविद्यालय में जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में भाग लेने वाले पात्र जनजातीय कारीगरों और उत्पादक समूहों का ट्राइफेड के साथ एम्पैनलमेंट किया जाएगा। पंजीकृत होने के बाद ये कारीगर देशभर में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों, जनजातीय मेलों और ट्राइफेड के मुख्य ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्रों के माध्यम से अपने उत्पाद बेच सकेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश में भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। इससे अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि होगी। हालांकि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने के आसार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर परीक्षा निरस्त कर घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई। और जनजातीय कारीगरों को मंच प्रदान करने आज धमतरी में कारीगर सूचीबद्धता मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10 बजे है, सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी। 10:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे 11 बजे और पुनः 12 बजे। 11:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 11 बजे और पुनः 12 बजे।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। भजन संध्या का वक्त होगा 5:10 पर। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये समाचार रिले किया जाएगा फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। आप सुनेंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:45 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी किसानों की उन्नति में मददगार मशरूम की खेती। आज की नसीहत में आप सुनेंगे सफलता के लिए कृषक किसान उत्पादक संगठन से जुड़े। आज का टेप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम साथ ही आप सुन सकेंगे। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 8:30 पर। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। रजनीगंधा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था, और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए

0: एक बड़ी बात है। बंकिमचंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट, प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन की हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नॉवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Bande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Bande Mataram hamara garv hai Swadesh ko aage badhane ke liye. Ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सिरगुजा। कार्यक्रम संबंधी जानकारी आप पुनः प्राप्त कर सकेंगे शाम 5:05 पर। 5:10 पर होगा कार्यक्रम भजन संध्या। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर। यह समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। पुनः आप लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग। आप सुनेंगे शाम 7 बजे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा किसानों की उन्नति में मददगार मशरूम की खेती। आज की नसीहत में आप सुनेंगे सफलता के लिए कृषक किसान उत्पादक संगठन से जुड़े। साथ ही होगा आज का टीप, कृषि प्रश्न मंच और आज का मंडी भाव, साथ ही आज का मौसम। गैर फिल्म गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम का वक्त होगा 9:00। विविध संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 9:00। रजनीगंधा कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर। हिंदी में समाचार 11:00 और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी जानकारी में बस इतना ही समाप्त होता है कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर आप पुनः

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में संदेश से पहले आपने सुना मिताली सिंह को। अगला गीत सुनिए जिसे गाया है बाबुल सुप्रियो ने।

उज्जवल रॉय के गायस नगमे के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नमस्कार श्रोता साथियों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और जिस तरह से एक बाग में ढेर सारे फूल होते हैं और सारे फूलों में अलग अलग खुशबू और सारे फूल अलग अलग रंग के होते हैं, उसी तरह आज भी हम अपने प्रोग्राम आपकी फरमाइश में आप सभी के पसंदीदा गीत लेकर आ चुके हैं, जिसकी अपनी अलग अलग खासियत है। और कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सुनते हैं फिल्म।

अमानुष का ये गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने, इन दीवर ने इस गीत को लिखा है, श्यामल मिश्रा का ये संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अली, आसिफ नईम राजा, दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास और गेंदू, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मोतीनगर नई दिल्ली से मानसी अनिल गौरव, कविता अरोरा, सुनिए अपनी पसंद का गीत फिल्म अमानुष से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, इंदिवर ने इस गीत को लिखा है, श्यामल मित्रा का संगीत है। श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आज आपके साथ हूँ आपकी रेडियो दोस्त दिनेश्वरी यादव।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: श्रोता साथियों, खुद्दार फिल्म का गीत सुनिए जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत को लिखा मजरू ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं रॉबर्टसन, दर्रा मुड़ा से लंबोदर प्रसाद, फैलेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, पीयूष, हेमंत, तरुण, रामख्याल, तुलाराम, आर्यन, अयान, रूप बसंत, मानस देवा पटेल, सीताराम निषाद, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से खुशी, ब्रोनो, गणेश कार्तिक, संजना परी, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। सुनिए श्रोता साथियों अपनी पसंद का ये गीत।

0: ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से, और अगला गीत सुनिए जिसे गाया सुरेश वाडकर ने और लता मंगेशकर ने। इस गीत को लिखा संतोष आनंद ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है प्यासा सावन। इस गीत को सुनना चाहते हैं हटरी चौक बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रजनी, प्रियंका, रेणु देवांगन और जया रानी। गौशाला परा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, ईशु और अंशु गुप्ता। सदाबहार रेडियो श्रोता संताजपुर मोरवा से कारी राय, मीनाकारी पुंजराजारियन, आरती पुंज, आकर्षण जय श्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोल सकरा से जयंत कुमार बैरागी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक।

श्रोता साथियों, अगला गीत सुनिए फिल्म सांवरिया से, जिसे गाया शान ने। समीर के लिखे इस गीत में संगीत है मोंटी का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं श्रृंगेशी महानदी सियाव पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश दिवांगन, मधु दिवांगन हिमांशु और अंकित दिवांगन, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाऊ रानू, खुशी प्रवीण साहू और सीएल यादव।

श्रोता साथियों, आप भी अपने पसंद के गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता नोट करें, shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com। और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़, छत्तीसगढ़, पिनकोड 56601। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़, छत्तीसगढ़, पिन कोड 56601। अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश से डिनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती, कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

0: आईना ये था एल्बम का नाम। जगजीत सिंह की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा और संगीत जगजीत सिंह का।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये कवाली अभी आप सुन रहे थे। अमर अकबर एंथनी फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेड इन इंडिया एल्बम का नाम था बिडू का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

यूनिक, ये था एल्बम का नाम। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कैफ भोपाली ने इसे लिखा और संगीत जगजीत सिंह का।

0: मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन का म्यूजिक था और उन्होंने इसे लिखा।

अनामिका की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, कैट वॉक एल्बम का नाम था। इसके साथ ही आज का ये रंग तरंग प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। रंग

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब

0: अब और राजस्थान से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।
1: यादें फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान और महालक्ष्मी की आवाजों में प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से। समीर ने इसे लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जहां इंतजार है, तड़प है, ऐसे गीत हम आपको आज इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत बॉबी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आनंद मिलन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा उपाध्याय, आज आपके साथ इस सफर में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन कौन से गीत आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपकी गीतों की लिस्ट मैं देख चुकी हूँ कमेंट बॉक्स में जाकर, और भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं ये भी मैं देख रही हूँ।

हूँ और देखते हैं कि आपके ये गीतों की लिस्ट या शब्द हमारे गीतों से कितने मिलते जुलते हैं, और अगर ना भी मिले तो भी आप अपने गीतों को, पसंदीदा गीतों को कमेंट्स में लिख सकते हैं, हो सकता है हम इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और जिन श्रोताओं ने वो टेक्स्ट या इबारत नहीं पढ़ी है अब तक, हम उन्हें एक बार फिर से पढ़कर सुना देते हैं। इबारत इस प्रकार है, शाम का मौसम कुछ बदला बदला था, कई सालों बाद शहर में सावन इतनी खूबसूरती से आया था। खिड़की के पास बैठी एक लड़की बारिश को देख रही थी और जाने क्यों आज फिर उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी। सुनिए, कुछ कहिए ना। सालों पहले इसी मौसम में एक अजनबी उससे मिलने हसीन वादियों में आया था। दोनों घंटों बारिश में भीगे थे, चांद को देखते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। उसने कहा, तुम्हें पता है ये मौसम तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। फिर एक दिन उस परदेसी को दूर, बहुत दूर जाना पड़ा। अब बस इंतजार उसका साथी बना। हर सावन में वही राहें, वही बरसात और वही शाम, वो ही उसके साथी थे। उसे उसकी याद दिलाते। आज भी बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी, लेकिन अब के सावन में जी डरे बेचारा दिल क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उसे देखा, बस ये कहा, अब के तो रास्ता भूल गए लेकिन अब कहीं ना जाना। बहुत प्यार से उसने कहा, मैं चांद चुरा कर तो नहीं ला पाया लेकिन तुम्हारा इंतजार जरूर अपने साथ लेकर लौट आया हूं। तो साथियों, ये थी इबारत। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आपने चुने हैं और कौन कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, अमित खन्ना ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। साथ ही आपके खूबसूरत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत उस इंतजार, उसी मोहब्बत और उस विश्वास की कहानी है जहां बरसों की दूरी भी दिलों के रिश्तों को कम नहीं कर पाती है। हालांकि संदेश बहुत लंबा है लेकिन मैं चाहती हूं कि सभी के संदेश शामिल हो, इसीलिए कुछ पंक्तियां ले रही हूं। हमारे दूसरे श्रोता कहते हैं कि विरह प्रेम की वो निशब्द ऋतु है जिसमें स्मृतियां ही सहचर बन जाती है, प्रिय की अनुपस्थिति में हर आहट उसका आभास देती है। जब बरसों बाद दो निगाहें मिलती है तो लगता है जैसे सारी तन्हाइयां एक पल में सिमट गई है। बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे सावन की हर बूंद किसी पुराने खत का भीगा हुआ अक्षर हो। बरसों का इंतजार, वही रास्ते, वही शामें और किसी की आवाज की बची हुई गर्माहट सब मिलकर दिल के उस कोने को फिर से भिगो देते हैं जहां मोहब्बत कभी विदा हुई ही नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत विचार हैं ये। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय साहित्य में सावन को हमेशा श्रृंगार रस के दोनों पक्षों यानी कि वियोग और संयोग से जोड़कर देखा गया है। कथा की शुरुआत में नायिका का खिड़की के पास बैठना और बारिश की बूंदों के साथ पुरानी स्मृतियों का उभरना, और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे इस इबारत के बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का महीना तो है, ये जाहिर है, लेकिन गीत भी वैसे ही बजेंगे और हम कितनी भी बार ये गीत सुन लें लेकिन मन नहीं भरता है, तो इसीलिए बारिश नहीं है तो भी धूप के साथ हम आनंद उठाएंगे इस प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हालांकि सावन का महीना अपनी समाप्ति की ओर है लेकिन सुरीला सफर में पूरे माह अलग अलग विषय पर मेला लगा है। कभी झूला, विरह, इंतजार, बारिश की फुहार, खाना पकौड़ी आदि, बहुत मजा आता है। और सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का ये अंदाज बहुत ही निराला है जो कि हम श्रोताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर मोतियों की तरह पिरो कर रखता है। सच में जिंदगी में सावन की बूंदे की तरह छम छम ये कार्यक्रम रंगारंग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों का। हम आते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पर भी। फिलहाल हम एक गीत सुनवाने वाले हैं और आप सबने उसका जिक्र किया है अपने कमेंट में, वो बहुत ही प्यारा गीत है, वो आपको सुनवाने जा रहे हैं और उसके बाद हम आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो अनुभव हैं वो सारे

बालिका वधू इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। सुरीला सफर है और आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश। बालिका वधू, अमित कुमार, आनंद बख्शी, आपने पूरी डिटेल्स भेजी है इस गीत की और इस गीत को बहुत पसंद किया है, ऐसा सबने लिखा है। एक हमारे श्रोता है जिन्होंने इंग्लिश में मैसेज भेजा है और उनका मतलब ये है कि आज के इस प्रोग्राम में बारिश और लव सॉन्ग्स मेन अट्रैक्शन।

होगा। जी हाँ बिल्कुल। और हमारे दूसरे श्रोता हैं जो लिखते हैं अपनी अपना एक अनुभव साझा करते हैं कि शाम का मौसम बहुत बदला हुआ था। पिछले हफ्ते मेरी धर्मपत्नी और मैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने कश्मीर गए थे। शाम के समय हम बाबा बर्फानी जी के गुफा पहुंचे थे और इस तरह से मौसम का मजा लेते हुए जब वापसी में आ रहे थे तो लैंडस्लाइड होते हुए देखा, तेज बारिश, पत्थर गिरते देखे और यात्रा अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। जी हाँ, बारिश जहाँ बहुत खूबसूरत लगती है वहीं अगर अति हो जाए किसी चीज़ की तो परेशानी भी देती है। तो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ सही मात्रा में सही जगह सही समय सही लगती है, और अगर वो ज्यादा हो जाए अति हो जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर देती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी की तरह बरसात भी हमें काफी दिनों से तरसा रही है और विविध भारती के सुरीले सफर में तो पिछले कुछ दिनों से गीतों की बौछार सावन लगातार छाया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो, हम भी आपके साथ हैं इसमें। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं ये जो गीत हैं, इसमें वाद्य यंत्रों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है जहाँ शब्दों की गहराई उभर कर आती है और इसीलिए ये आवाज़ की ताजगी, थोड़ी सी हिचकिचाहट इस गाने के जो तरीके में चार चांद लगा देती है। बिल्कुल आपने सही पहचाना और बिल्कुल सही तरीके से इस गाने के बारे में लिखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन की भीगी रातें इंसान को बाहरी दुनिया के शोर से काट कर खुद से रूबरू कराती है। ये वो जादुई वक्त है जब अंधेरा भारी नहीं लगता बल्कि बारिश की चादर में लिपट कर हर रूह कुछ देर के लिए थमना चाहती है और सिर्फ सुनना चाहती है बाहर गिरती बूंदों की धुन और भीतर गूंजती अपनी ही खामोशी। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये संदेश लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये मेरा पहला पोस्ट है, मैं आपका विविध भारती पूरा दिन सुनता हूँ और सुबह से चालू हो जाता है हमारा रेडियो सेट। प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी गाने आते हैं सब इन्हें बहुत पसंद है और पूरा दिन इनका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यार भरे संदेशों के लिए, हमें भी आपके ये संदेश पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। संदेशों में हमने एक बात कही थी अति की, तो कहते हैं ना कि इंतजार मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है। बहुत प्यारा लगता है वो वक्त जो किसी के इंतजार में, किसी के आने के इंतजार में गुजरता है और फिर उससे मिलने की चाह होती है, लेकिन ये कुछ मिनटों का या कुछ देर का होता है तो इंतजार अच्छा लगता है। अगर यही इंतजार बहुत घंटों का हो जाए, दिनों का हो जाए, बहुत ज्यादा वक्त का हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं झुंझलाहट आ जाती है। तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए, इंतजार क्या आपने भी किसी को करवाया है लंबा इंतजार, और क्या किसी ने आपका लंबा इंतजार किया है, उस बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके संदेश पढ़ने में। तो इंतजार करना या करवाना दोनों ही अजीब सी उलझन भी है और कष्टदायी भी है। तो आपने किसी को इंतजार करवाया हो या आपका किसी ने इंतजार किया हो बहुत लंबे समय तक, तो जरूर लिख भेजे, मैं इंतजार कर रही हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ने का। तब तक दिल ये क्या करे,

बेचारा दिल क्या करे, खुशबू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। जब तक ये गाना प्ले हो रहा था तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके संदेश पढ़ रहे थे, यही दिल करे, और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर में बारिश बरसने के बाद रुक गई थी, लेकिन आज बारिश का मौसम बना हुआ है, आकाश में काले काले बादलों का जमघट है, बहुत खूब। तो आप इस मौसम के साथ इन गीतों का आनंद उठाइए। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या लिखें, क्योंकि विविध भारती पर आते तो हैं लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी और सरदर्द की शिकायत है, तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या लिखना है, लेकिन नमस्कार उन्होंने लिखा है और हमारा भी आपको नमस्कार, और हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और प्यारे प्यारे गीतों का साथ बना रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की याद लिखते हैं वो, कि हम खेलते थे और माँ के डांट खाने के बाद घर पर आते थे और फिर भगवान के सामने बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे, दादी की नज़र हम पर कड़ी हुआ करती थी, बहुत डर लगता था और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें ज़्यादा डांटना पड़े। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंतज़ार की जब बात कही गई है तो इंतज़ार केवल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये वक्त के बदलने का होता है, कामयाबी का होता है या किसी अच्छे दिन के आने का भी होता है। ये जीवन को एक मकसद देता है कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, इंतज़ार किसी का भी हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बदलती हैं, तो कब किस समय किसका इंतज़ार है ये ज़रूर अलग अलग होता है। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और कुछ बेहतरीन, कुछ दिलचस्प किस्से भी छोटे छोटे यानी कि कम शब्दों में हमें भेज सकते हैं जिसे हम यहाँ पर पढ़कर सुना सकें। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बेचारा दिल ज़रूर आएगा, ऐसा उन्हें लगा था कि ये गाना ज़रूर प्ले किया जाएगा। चलिए हम भी खुश हैं कि आपकी ये पसंद हमसे मेल खाती है। फिलहाल चलते हैं हम अगले गीत की तरफ।

0: बड़े दिल वाला ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आरडी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी।

0: ही उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
1: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुरीला सफर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं इंतज़ार की। आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं इंतज़ार वाले। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कभी हम घूमने जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र या तो मुझे काम आ जाता है तो वो इंतज़ार करता है, उसे बहुत काम आ जाता है तो मुझे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। थोड़ा चिढ़ ज़रूर जाता हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते हैं, पर फिर प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंतज़ार से। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि करीबन 5 साल पहले उन्हें एक काम हुआ था, एक काम के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना पड़ा था दफ्तर में, और किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें 5 घंटे का इंतज़ार करवाया, लेकिन इंतज़ार किया लेकिन आखिरकार वो काम करके ही लौटे। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जितना हंसा था उससे ज़्यादा उदास हूँ, आँखों को इंतज़ार ने सावन बना दिया है। ये हमारे गीत सुनकर इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि जब कभी पहले बारिश होती थी जब वो छोटी थी और बाबा काफ़ी लेट आया करते थे, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोन भी कुछ ही घर में हुआ करते थे, तो माँ काफ़ी चिंतित हो जाती थी और भगवान के सामने बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी। बाबा आते थे काफ़ी लेट भीग कर, और लेकिन उनके आने के बाद से टॉवल से पहुँच कर उन्हें और ये चाय वगैरह की सेवा में लग जाती थी, तो उस तरह की एक याद है उन्हें बारिश से रिलेटेड। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इंतज़ार एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है। जिंदगी के रंग बिरंगे लिबास में इंतज़ार का सुराग नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता कहाँ है। यहाँ तो हर पल दूसरे का इंतज़ार है, रातों को नींद का इंतज़ार है, सुबह को सुकून का, बारिश को मौसम का इंतज़ार है, मौसम को महीनों का, मुस्कुराहट को खुशी का इंतज़ार है, खुशी को सफलता का। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने लिखा है कि हर किसी को हर किसी का इंतज़ार है। हालांकि इंतज़ार किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें इंतज़ार तो करना पड़ता है सही वक्त का। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, किसी शादी का किस्सा लिखते हैं कि दुल्हन विदा हो ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, बहुत महीनों और सालों के बाद गौना हुआ और उसके बाद उनकी विदा की गई, और ये जो इंतज़ार है, लंबा इंतज़ार, उन्हें अभी तक याद है और ये रिवाज के चलते ऐसा हुआ था। जी हाँ, रीति रिवाज तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। हमारे एक श्रोता है जो फिलीपींस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और वो लिखते हैं कि बहुत दिनों की बारिश के बाद सूर्य देवता निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम इंतज़ार की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों का। और तो हम क्यों इंतज़ार करवाएं आपको अगले गीत का, सुनवाते हैं झट से अगला गीत।

देवता फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, गुलजार ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। आप सुन रहे हैं इस वक्त सुरीला सफर। सुरीला सफर में आपके संदेशों का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार शब्द जब आता है तो ये मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो वक्त, वो लम्हे किसी के आने की इंतजार हम करते हैं, लेकिन अगर ये लम्हे और ज्यादा लंबे हो जाते हैं, घंटों महीनों के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी को इंतजार करवाया है या किसी ने आपका इंतजार किया है? ये अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और कुछ संदेश बहुत ही दिलचस्प है कि किसी को इंतजार करना करवाना कितना अलग है। जब इंतजार लंबा होता है तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है, लेकिन अपने बचपन की याद की अगर बात करें तो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार उन्हें हमेशा रहता था, और ये इंतजार बहुत ही सुख देने वाला होता था, बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कोलकाता में इस वक्त हैं वो, और वहाँ पर पंडाल की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश होती चली जाती है तो ये जो इंतज़ार है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं उलझन भरा है। तो इंतज़ार हर एक परिस्थिति में बहुत अलग होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें इंतजार रहता है कि आप हमारे गीत कब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपका जो कमेंट है, आपके जो संदेश है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

चुपके चुपके, ये था फिल्म का नाम जिसे ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस वी वर्मा की तर्ज थी। ये गीत का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। चुपके चुपके फिल्म का नाम एक बार फिर से आपको बता दें। आपके संदेशों से भर चुका है कमेंट बॉक्स और मैं देख रही हूँ कि किसका संदेश पढ़ा जाए, क्योंकि एक साथ ही खूब सारे संदेश आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनका पसंदीदा गीत बज चुका है तो अब वो प्रोग्राम सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो इस प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे थे। नहीं, हम चाहेंगे आप ज़रूर ये प्रोग्राम सुनें और अंत तक सुनें, बने रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है, देवभूमि, द्वारका, जामनगर और पोरबंदर जैसे तहसील में बारिश नहीं है, इंतज़ार हो रहा है। बिल्कुल इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार फल देता है, बिल्कुल फल देता है। और हम अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, अगले गीत की तरफ चलेंगे। तो कुछ बताइए कौन सा गीत है, कमेंट में इंतज़ार रहेगा।

सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी की आवाजों में गीत चलते चलते फिल्म से अभी आपने सुना। अमित खन्ना ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस समय बनारस में धूप खिली हुई है और हम लोग आ ही गए हैं अपनी सुरीली धड़कन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे श्रोता लिखते हैं कि प्यार में किसी का इंतजार करना इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। इस अनुभव से रूबरू हो चुका हूं मैं। 7 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मिलने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हम तो कैब वाले का इंतजार करते हैं, बुक करो कैंसिल कर देता है, और बहुत जरूरी कहीं पहुंचना पड़ता है वो इंतजार जरूर करना पड़ता है, तो हार के बस पकड़ी है। इसका भी अलग ही मजा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें सुरीला सफर का इंतजार रहता है, उसके बाद हेलो सहेली का भी इंतजार रहता है, तो विविध भारती के जितने प्रोग्राम है एक के बाद एक दूसरे का इंतजार हमें जरूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करना सबके वश की बात नहीं होती। कोयल पूरा साल सिर्फ बसंत ऋतु का इंतजार करती है ताकि अपने सुहाने सुरीले बोलों से वादियों में अपनी आवाज घोल सके। जी हाँ। एक और श्रोता ने लिखा है, जाना कहाँ है इस गीत के बारे में। बप्पी दा ने इस गाने में बिल्कुल अलग अंदाज में ऊंचे और रफ नोट्स का इस्तेमाल किया है जो कि बेहद आकर्षक है, और उनकी जो आवाज़ है गाने की बीट्स के साथ पूरा न्याय कर पाती है। साथ ही सुलक्षणा जी की आवाज़ भी अत्यंत मधुर लगती है, और इस गाने का जो आलाप है वो हिस्सा बहुत ही अलग ही जादू बिखेर देता है। जी हाँ, बिल्कुल हम भी इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं, और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत स्वीकार किया मैंने फिल्म से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे भरे संदेशों का। हम मिलेंगे जल्द ही, और सुरीला सफर से अनुराधा को दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी।

1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम का गायन किया था।

0: सन 1900 से आगे हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से ही करने की परंपरा बन गई। उस वर्ष दक्षिणा रंजन सेन ने वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। आगे थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत जगत के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनके शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन और पंडित रामकृष्ण बुआ वजे जैसे गायक अपने गायन के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना से अधिवेशन में अपनी वंदे मातरम की गायन सेवा देने लगे। इसी काल में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियां बदलती गईं। कांग्रेस के हिंदू नेता धर्म निरपेक्षता का आग्रह कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम नेता धर्म प्रेम को प्राथमिकता दे रहे थे। इसका परिणाम कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रसंग के रूप में सामने आया।
1: उन्नीस सौ 1923 में आंध्र प्रदेश के

0: नाड़ा में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ था। अली बंधुओं में से मौलाना मोहम्मद अली इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले ही दिन मंच पर कांग्रेस के सभी नेता अध्यक्ष सहित उपस्थित थे। अधिवेशन शुरू होने की घोषणा हुई। दर्शकों में से एक ऋषि तुल्य व्यक्ति मंच पर आ रहे थे। दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ रहा था। वो व्यक्ति थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भीष्माचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मंच पर बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सीने तक लटकती हुई दाढ़ी, सिर पर ऋषियों की तरह बंधे हुए केश, ऐसे शुभ्र वस्त्रधारी पंडित जी प्रसन्न चित्त से वंदे मातरम गाना शुरू करने ही वाले थे। तभी अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें रोकते हुए कहा, वंदे मातरम मत गाइए, मेरे धर्म में संगीत निषिद्ध माना गया है।
1: अचानक घटी इस घटना से मंच पर मौजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता हक्के बक्के रह गए। अध्यक्ष का ऐसा कहना पंडित जी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक का अपमान तो था ही, साथ ही खुदीराम बोस से लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से सिद्ध किए हुए तथा बंगाल के विभाजन को रद्द करवाने वाले इस राष्ट्र मंत्र का भी अपमान था। सामने खड़ा जनसमुदाय स्तब्ध था। पंडित जी ने अपने ऋषि तुल्य स्वभाव के अनुसार जरा भी विचलित हुए बिना शांत फिर भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया,
0: माननीय अध्यक्ष महाराज, ये कांग्रेस का मंच है, किसी भी धार्मिक समुदाय का मंच नहीं है। मैं हमेशा की परंपरा के अनुसार वंदे मातरम गाऊंगा ही।
1: अध्यक्ष सभा स्थल छोड़कर चले गए। पंडित जी ने शांतिपूर्वक वंदे मातरम का गायन शुरू किया। गायन समाप्त होते ही पूरे जनसमुदाय के वंदे मातरम के नारों से परिसर गूंज उठा। उसके अगले अधिवेशन में पंडित जी वंदे मातरम गाने के लिए नहीं आए। वंदे मातरम का मुस्लिम समाज द्वारा पहला सार्वजनिक विरोध इसी प्रसंग में हुआ था।
0: एक अत्यंत महान कलाकार द्वारा अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी राष्ट्रभक्ति के दर्शन कराना, ये बिल्कुल नई बात थी। जिस काल में कलाकार राजनीति के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे या बाहरी दुनिया से अधिक अपनी कला की दुनिया में ही रमते थे, उस काल में पंडित पलुस्कर ने जो धैर्य दिखाया वो अतुलनीय कहा जाना चाहिए। 1902 में भारत में संगीत की पहली ध्वनि मुद्रिका यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्रकाशित हुई। ध्वनि मुद्रण के इस पहले दौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की तरह ही भारत के अनेक श्रेष्ठ गायकों ने रिकॉर्ड के लिए गायन नहीं किया था। इसके कई कारण थे, परंतु उन कारणों से उनके समय में रिकॉर्डिंग तकनीक का आविष्कार हो जाने पर भी उन्होंने रिकॉर्ड के लिए गायन न करने के कारण आज के शोधार्थियों के लिए, अभ्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए उनके गायन के बारे में लिखे गए संगीत संबंधी लेखों से, स्मृतियों से ही उनकी गायकी का उन्हें दर्शन मिलता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया वंदे मातरम का राग काफी में नोटेशन आगे उनके संगीत अध्यापन की विरासत को समर्थ रूप से आगे बढ़ाने वाले उनके शिष्य पंडित विनायक बुआ पटवर्धन ने प्रकाशित किया। पंडित विनायक बुआ की आवाज में यह दुर्लभ ध्वनि मुद्रण घोष महर्षि बापूराव दाते ने स्वयं किया था।

काल के समय में यही संगीत रचना विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा एक संगीत समारोह में प्रस्तुत की गई। उस समारोह का तथा आज की पीढ़ी के गायक पंडित शौनक अभिषेकी और साथियों के स्वर में ध्वनि मुद्रण प्रकाशित हुआ है। पहले सुनते हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के स्वर में वंदे मातरम की झलक।

0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, उन्हीं दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी।
1: जुलाई 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें आईं। उनमें से मद्रास विधानसभा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से ही हुई थी। मद्रास विधानसभा के अध्यक्ष सांबुमूर्ति ने दैनिक सभा कार्य की शुरुआत वंदे मातरम से ही हो ऐसा निर्णय अंग्रेजों के विरोध को दरकिनार करके लिया था।
0: इन सभी मंत्रिमंडलों की मुख्य बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी हुई थी, फिर भी थोड़े बहुत अधिकार कांग्रेस को भी थे ही। मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवार चुनकर आए, परंतु उन्हें बहुत कम सीटें मिली, इसलिए बैरिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस पर आलोचना शुरू कर दी और उसमें वंदे मातरम को भी मुख्य निशाना बनाया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 42वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
4: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स

0: संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
1: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
3: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

0: वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय

0: प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म से, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एस डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गीत मधुमति फिल्म से अभी आपने सुनी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र ने इसे लिखा।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत बंदिनी फिल्म से अभी आपने सुना, गुलजार ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आप सभी सखियों का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती? दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ, कहां विविध भारती के स्टूडियो में, और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म, बज उठी फोन की घंटी। तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम।
0: नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम।
0: जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है?
1: भाई कोई बुलाया इस साल।
0: अच्छा, क्या बात है। तो उन सबकी तैयारियां होंगी घर में?
1: हाँ, ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और भाई भी आएगा।
0: अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती है नागपुर में?
1: हाँ,
0: और आपके भाई
1: भी रहती है। भैया भी आएंगे
0: जी। तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है? पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे एक हंसी ले आती है?
1: पुरानी यादें तो बहुत है मैडम। अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो हम मैं छोटी थी, सबसे अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती, पांच भाई थे।
0: अच्छा।
1: भाई के लड़के, फिर भतीजे, सबको राखी मैं अकेली बांधती थी। फिर बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम।
0: ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है पांच भाइयों के बीच?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, चार बहन है सबकी, सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी, फिर छोटी थी मैं सबसे।
0: अच्छा, और उसके अलावा दीपा जी क्या करती हैं आप?
1: हाउसवाइफ है मैडम। हम
0: हाउसवाइफ है,
1: घर में ही रहते हैं। हाँ, बच्चे हैं, बहू है, लड़के, दुकान है अपनी मैडम।
0: अच्छा जी, किस चीज की?
1: पान शॉप की है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में, है ना?
1: हाँ, दुकान में ही करते हैं सब, हम घर में नहीं करते कुछ।
0: अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना लीजिए, इसे समझो नरेशम का तार भैया।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: वैशाली भाटी से।
0: वैशाली भाटी। तो वैशाली जी, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम इंदौर से।
0: इंदौर से? अरे वाह, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसा चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना, इंदौर में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं।
1: हाँ, बहुत बढ़िया है।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हमारा तो ऐसा कहीं नहीं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है।
0: अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके?
1: बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था फिर? कहाँ से शादी हुई?
1: अपन महाराष्ट्र से जलगांव।
0: जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं, तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना?
1: हाँ, बहुत सारा बढ़िया लगता है।
0: और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर?
1: मेरे साथ मेरे सास ससुर और मेरे पति और मैं।
0: अच्छा, पहली राखी आई ये शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी?

0: पहली आएगी, पहली आएगी,
1: पहली आएगी। तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी, कैसा क्या होने वाला है?
0: नहीं, अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले हैं ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ, इसलिए अभी जाना बंद है।
1: तो जाना बंद है तो...
0: अभी छोटा सा बेबी आएगा ना।
1: ओह, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा
1: तो चलिए सुनते हैं।
2: मेरा

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नासिक।
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ विविध भारती से, मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं, है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप बताइए?
1: पारस मनी फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आज का हुआ रानी चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: नीता महाजन, भवानी सागर, देवास से।
0: जी, देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी। राखी का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर?
1: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे।
0: अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली हैं आप?
1: चक्की बना सकती हूँ मैं बेसन की।
0: हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की और बड़ी स्वादिष्ट ये मिठाई होती है ना? जी, तो घर में और कौन कौन है अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: तो मेरी तीन बेटियां हैं, तो दो की शादी कर चुकी हूँ मैं और एक पढ़ाई कर रही है अभी।
0: जी, तो दो बेटियों की शादी हो गई है, तो वो आने वाली हैं मायके?
1: हाँ, मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी।
0: जी, और छोटी बेटी किस चीज की पढ़ाई कर रही है?
1: वो बीकॉम कर रही है।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का।
1: हाँ, वही इंतजार चल रहा है ना।
0: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों?
1: हाँ, मन खुश रहता है ना।
0: और आज आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रहे।
0: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटुया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: उज्जैन से रेखा वर्मा, क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। अभी हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में,
1: हाँ,
0: हमने भी
1: बहुत
0: देखी।
1: सुंदर सुंदर राखियां हैं मैम, और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए हैं ताकि और अच्छी मिल जाए हमको।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना
1: जी,
0: भीड़ मिले और राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप कर
1: खूब अच्छे
0: सके।
1: से कर सकते हैं अपन।
0: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैडम, मैं हाउसवाइफ हूँ
0: अच्छा,
1: बस, मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
0: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है
1: नहीं
0: वो
1: नहीं
0: बताइए।
1: मैम, जाऊंगी मैं। क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में,
0: अरे वाह, तो घर में तो
1: तो
0: सब
1: इसलिए।
0: आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
1: जी जी मैम,
0: ऐसा हो जाता है जहाँ पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
1: जी मैम,
0: तो कहाँ है आपका मायका?
1: मेरा मायका मैम ब्यावरा पचोर
0: अच्छा,
1: राजगढ़ जिले में है।
0: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
1: बिल्कुल मैम,
0: जी।
1: बहुत इंतजार रहता है। भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी, मेरा वो आने वाली है मैम। कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए वापस।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: मेरी मम्मी नहीं है, भाभियां हैं, लेकिन मेरी भाभियां ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती है, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से।
0: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले
1: जी
0: लिया
1: मैम,
0: है ना?
1: वो
0: तो
1: इंतजार करती है दीदी आ जाएंगी, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई की एक बहन है, कोई दो बहनें हैं, तीन बहन

0: ने तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है,
1: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियां आपका इंतजार करती
0: मेरा
1: हैं
0: इंतजार करती है मैम,
1: कि
0: मैं एक
1: कब
0: भी नहीं जाती है।
1: रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना
0: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार
1: जी।
0: करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है।
1: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और नंद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी
0: जी,
1: बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: मजबूर पिक्चर का सुनना है। देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
1: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना
1: जी।
0: तो आप खरीद लाएं या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी, मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते, नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी, ऐसे होता ही है। लेकिन क्या है, हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं, तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ, वैसी मेरी भी भाभी है, वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाती हैं, तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा 1 दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं, उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है, और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं, और फिर यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति को, उनकी भी तो बहनें हैं ना, वो लोग आए राखी बांधने के लिए। तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए।
1: जी, आपकी बात ईशिका वर्मा से हो रही है
0: कहाँ से बात कर रही हैं ईशिका आप?
1: जी? उज्जैन से। हाँ,
0: क्या बात है, ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्नी सी गुड़िया हैं आप।
1: यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है। हाँ
0: अच्छा, क्या बात है। तो
1: जी
0: ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, विविध भारती सुनती है
1: यस
0: ना?
1: मैम। मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा मेरे फादर इन लोग वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है।
0: क्या बात है। तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं?
1: यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है। यस
0: इसी साल?
1: मैम, फैमिली
0: अच्छा, अरे वाह,
1: अच्छी है मैम, बिल्कुल। हाँ
0: अरे वाह, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। तो आपके इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं ईशिका। और
1: थैंक
0: बताइए,
1: यू मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए, आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी। मैम नमस्ते। पहले तो आपको, हाँ
0: नमस्ते। साबरमती
1: जी, मैं प्रमिला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से।
0: से प्रमिला महेश?

0: जी तो बताइए प्रमिला जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए।
0: जी यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ
1: हाँ
0: हैं।
1: जी,
0: जी तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात
1: हाँ
0: की ये
1: जी
0: कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक
1: जी
0: काम है।
1: हाँ जी मैम जी मैम, ये घर के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग है महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: मतलब
1: जी
0: आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, मतलब खाना ना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है
0: क्या बात है, तो सखी
1: जी
0: सहेली
1: जी
0: और आपका तोरण बनाने का साथ, ये
1: मैम
0: हमेशा साथ
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है आपका सखी सहेली है, हेलो फरमाई से जी।
0: प्रमिला जी तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं वही ये
1: हाँ जी
0: सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है
1: हाँ जी मैम,
0: तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी?
1: तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे ऐसे कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया हैं अभी वही हैं फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी
0: तो
1: ऐसे। वो एक दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
0: जी
1: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे,
0: जी
1: यही दुख
0: जी
1: लगता है ज्यादा जी।
0: जी कष्ट जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ,
1: हाँ
0: उसका
1: जी
0: सामना
1: मैम,
0: करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना?
1: शक्ति मिलती है मैम, अभी
0: जी
1: थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
0: हाँ,
1: एक भैया है उनसे भी हम
0: जी
1: अच्छे रहते
0: हम
1: हैं, खुश रहते
0: जी
1: हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही
1: जी
0: अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी
1: जी
0: करते
1: मैम
0: होंगे,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना?
1: ध्यान रखते हैं,
0: जी
1: बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके, बकायदा हमको न्योता मिलता है आने
0: ये बात तो
1: का
0: है।
1: और जाना
0: तो
1: भी पड़ता है मैम
0: और
1: फिर।
0: आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी
1: हाँ जी
0: बात कर सकते हैं, वहां से एक छोटी सी ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती
1: जी
0: है ना?
1: मैम, मिलती है तो नहीं, जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं
0: सही
1: ऐसा है।
0: बात है। जी हाँ,
1: हाँ जी
0: क्योंकि बार बार वहां जाना संभव नहीं
1: हाँ
0: हो
1: जी
0: पाता। जी तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मीना मारू बोल रही हूँ, इंदौर से।
0: इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात
1: जी?
0: है। तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी पिपली बाजार में,
0: जी
1: लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ,
0: क्या बात है। तो
1: और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं। और
1: हाँ जी,
0: सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियां मिलती हैं हमें, है ना।
1: हाँ जी।
0: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए।
1: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन,
0: जी
1: और एक बेटा है प्रियम मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है,
0: क्या बात
1: उसकी
0: है।
1: बेटी है, उसकी बेटी है अलिश्का 8 साल की।
0: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी, अब रक्षाबंधन, तो आपकी क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही हैं। मेरे दो भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था।
0: जी
1: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे,
0: जी
1: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
0: क्या बात है। तो आप सारी मिठाइयाँ आप
1: हाँ जी
0: बनाती हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर, स्पेशली मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में,
0: अरे
1: सबको मेरे
0: वाह।
1: हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं। करीब 35 साल से बनाती आ रही हूँ मैं। तो
0: जी
1: हमारा त्योहार राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4-1 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज जांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो
0: ओहो
1: त्योहार अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदायी रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है,
0: जी, वो महसूस
1: मुझे
0: कर
1: अपने
0: पा
1: भाई की
0: रहे हैं
1: बहुत
0: हम
1: याद आती है। हाँ
0: जी।
1: जी,
0: लेकिन मीना जी, यही है, जो हमारे प्रिय हैं वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका
1: हाँ
0: प्यार
1: जी
0: एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: आप
0: अच्छी
1: बात सही
0: यादों
1: कर,
0: को
1: बिल्कुल
0: आप
1: सही।
0: संजो के रखिए, उनके साथ
1: हाँ
0: बिताए, जो
1: जी
0: हंसी मजाक वाले जो अच्छे पल हैं उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो पहुंचा
1: बिल्कुल,
0: ही देंगे,
1: हाँ हाँ
0: है
1: हो
0: ना।
1: पाए, बिल्कुल
0: जी जी बिल्कुल।
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: बेईमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में। गाने के बोल है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे
0: आहा
1: चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को।
2: ये राखी।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही, इंडिया जम्मू कश्मीर से।
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगहत जान
1: जी
0: की।
1: जी
0: जी,
1: हाँ
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेजी हो रही है। अभी गर्मी चले क्योंकि सितंबर जो महीना है वो उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी, फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है।
0: जी, और उसके बाद तो फिर सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है। खास
0: जी
1: करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ,
0: जी
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यहाँ डल लेक है, वहाँ भी नाव शिकारी का सवारी करते और
0: जी
1: टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं।
0: जी कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी
1: हाँ
0: कश्मीर सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
0: जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए निगहत जान
1: जी,
0: आप।
1: मैं घर में होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। अब तो मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को,
0: कब?
1: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
0: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कुमसर जान।
0: जी, उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए।
1: हाँ चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहलो सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही जाता।
0: तो ये
1: हाँ
0: जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है सावन, गाने के बोला है तुझे याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
0: वो
1: अब
0: तो
1: तो
0: बस
1: साजन का ही
0: आ ही रहे
1: इंतजार
0: हैं, सितंबर में बस आने ही वाले हैं, है ना? तो
1: हाँ
0: अब ये
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इंतजार का जो वक्त है
1: खत्म हो गए
0: बिल्कुल खत्म होने को ही है, तो चलिए सुनते
1: बिल्कुल।
0: हैं इस गीत को।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश ना हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: दोस्तों नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
2: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हों, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं? क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था। बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन

पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला, पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित हो उठी।

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थी। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे। पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के एक माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले, हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

कहाँ तक पहुँची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी। ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने

हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिएं। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं। उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा, कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन 2-3 महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था, तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़, चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे? 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हरेक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ, और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं? समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है? ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए, और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहाँ तेज बारिश होगी वहां रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूं, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाद लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाद गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें, थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहां तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है। जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई, क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था, टेबल लैंप जल रही थी, साइड की रैक में किताबें रखी थी, चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं, दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाची से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है,

जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ही ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा, मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है, उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था, कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था, दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे, दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी, खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं, वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे, उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है, चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे? किस तरह की बात, आपकी तबीयत को लेकर? अरे नहीं नहीं, मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ, एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा, वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? फिर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहां 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहां केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं। देखेंगे बाद में, कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा मैं चाहता हूँ कि वहां खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो, बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था, और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एक टक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पाँव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक होठी, मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं, तुम वहां की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराये में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना?

जिन्हें टोकते हुए कहा, देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो, मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सबसे मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे तुम ही कर पाओगी, कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेकी।

विविध भारती कार्यक्रमों का अन्य प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेड़

0: कक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभयपुर, मेंड्रा, चंदन नगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पिंडारी, तनवारी, पोखरा, मदनपुर, चीनिया, महावीरगंज, छतवा, इंदरपुर, कनकपुर, शिलाजू, उचेरवा, आबादी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, मोहरा, जरहा, डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये मयूर चूंदी, कुंजारा, पाकरटोली, ढोंगा आंबा, उपका पानी, साजा पानी, बटई केला, कुदरा झरिया, तीता पाकेर, झिक्की, खंताडाण, परसाडाण, पेटा, कोडेग, मैनी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 88 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये कांसीपानी, जामपानी, साजा पानी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 65 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमाबहाल, कमतरा, चिमटा, पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के देवपुर और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर, चनहाट, कोठारी, तालदादर, पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। अब से थोड़ी देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे भजन संध्या का कार्यक्रम। चित्रपट संगीत सुनिएगा 5:30 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का वक्त होगा 6:20 का। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुन सकेंगे 7:00 से।

0: किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल हम प्रस्तुत करेंगे शाम 7:20 पर। चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय है किसानों की उन्नति में मददगार मशरूम की खेती। आज की नसीहत में आप सुनेंगे सफलता के लिए कृषक किसान उत्पादक संगठन से जुड़े। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे रात 8:20 पर। फिल्म संगीत का वक्त होगा शाम रात्रि 8:30 का। विविध संगीत हम पेश करेंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा। ये था कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, SHROTARAIGARH, यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने भजन संध्या। आज की कलाकार हैं लता मंगेशकर।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के

0: करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: हेलो रायगढ़, क्या आप भी एक नीट एस्पिरेंट हैं और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं? तो मार्गदर्शक लेकर आ रहा है आपके अपने शहर रायगढ़ में एक फ्री MBBS एडमिशन गाइडेंस सेमिनार, जहां हम आपको बताएंगे MBBS एडमिशन की सारी जानकारी इंडिया और अब्रॉड के कॉलेजेस के बारे में, जैसे कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, लो बजट ऑप्शन एंड कम्प्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो हमें ज्वाइन कीजिए इस रविवार 23 अगस्त को होटल रेड क्वीन में सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक।
5: कॉल करें 7049304956 एवं 6265230652 पर।
6: अभी आप सुन रहे हैं भजन संध्या का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं लता मंगेशकर।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। स्वर था लता मंगेशकर का और संगीत दिया था पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में फिल्म राजा का गीत अभी आपने सुना। स्वर थे अलका याग्निक और उदित नारायण के, गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
5: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
4: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
6: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
7: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
8: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
9: देश की सुरीली धड़कन
10: विविध भारती,
8: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
9: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
8: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
9: वीर सैनिकों की जय माला
8: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
9: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
11: सखी सहेली,
9: बॉम्बे टॉकीज और
12: सेल्यूलॉइड के सितारे,
9: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
13: मुझे याद सब है जरा जरा,
8: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
9: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
8: मन का सुकून, दिल की आरती,
9: सुरीली संदली।
14: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी, मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
14: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
14: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
14: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
8: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंज

0: ದಿ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
3: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा
5: मुझे याद सब है जरा जरा
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली
6: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने फिल्म तेरे नाम का गीत सुखविंदर सिंह की आवाज में गीत लिखा है जालिश शेरवानी ने और संगीत है साजिद वाजिद का

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ

0: भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में ये तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है, जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा। एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है, उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म तलाश का गीत, अलका याग्निक की आवाजें थी, गीत लिखा था समीर ने और संगीत संजीव दर्शन का था। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप

0: ने भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। अब से थोड़ी देर बाद 6:20 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुन सकते हैं शाम 7:00 बजे से। 7:20 पर सुनेंगे किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल। चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय है किसानों की उन्नति में मददगार मशरूम की खेती। आज की नसीहत में सफलता के लिए कृषक किसान उत्पादक संगठन से जुड़े। आज की इसके साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का वक्त होगा 8:30 का। कार्यक्रम विविध संगीत हम पेश करेंगे 10:00 बजे और 10:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये थे हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रम।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञान

विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती, अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का जी रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ह प्रवेश स्तर के न्यायिक सेवा परीक्षा दे के बारे में विधि स्नातक बर जरूरी 3 बच्छर के वकालत के बेरा लगटा के करीन 1 साल। मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के चमोली में हुए घटना में कोंडागांव जिला के 4 जिन मजदूर के परिवार बारे मन ला 5-5 लाख रूपया के आर्थिक सहायता दे के निर्देश दे है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होए के सूचना के बाद परीक्षा निरस्त करे के घटना के जांच पर बनाए गए है समिति। अब समाचार विस्तार ले। सर्वोच्च न्यायालय है प्रवेश स्तर के न्यायिक सेवा परीक्षा दे के बारे में विधि स्नातक बर जरूरी 3 बच्छर के वकालत के बेरा लगटा के 1 साल कर दे है। न्यायालय ह ए बारे में 5 बच्छर के अपन फैसला में संशोधन करे है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एजी मसीह और के विनोद चंद्रन की पीठ पुनर्समीक्षा ला खारिज करत 2-1 ले ए फैसला दिन। उत्तराखंड के चमोली जिला के पीपल कोटी में पाछू हफ्ता सुरंग हादसा में लापता 2 जिन मजूर के शव में 1 जिन के पहचान छत्तीसगढ़ के चेतन पोयाम के रूप में हो है। संगे संग ए घटना में जान गंवैया लोगन मन के संख्या बाढ़ के 10 हो गए है। ए घटना में कोंडागांव जिला के गांव धनसूली के 2, मदनार के 1 और दही कोंगा के 1 जिन

मजूर के मौत होए के पुष्टि पहले ही करे जा चुके हैं। ये घटना में ही जिला के दो झीन मजूर घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है उत्तराखंड के चमोली में बनत सुरंग में पानी भरे के घटना में कोंडागांव जिला के चार झीन मजूर के मौत ऊपर गहरा शोक व्यक्त करे है। मुख्यमंत्री है मृतक श्रमिक मन के परिवार वाले मल्ला 5-5 लाख रूपया और ये घटना में घायल दोनों श्रमिक मल्ला 50-50 हजार रूपया के

0: कि मामला आगू आए के बाद परीक्षा रद्द कर दे गए हे। मुख्यमंत्री ह ए मामला ला संज्ञान में ले हे। उमन कहिन कि एखर जांच बर 5 सदस्यीय जांच समिति बनाए गए हे। जांच रिपोर्ट आए के बाद दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाही। ए मामला में FIR दर्ज करा दे गए हे। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अविलक्ष्य लेखी हकीन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम ले मत्स्य किसान मल्ला आधुनिक तकनीक वित्तीय सहायता और बढ़िया अधोसंरचना दवाया जाती। काली रायपुर में रखे गए एक ठीन कार्यक्रम में ओमन कहिन कि छत्तीसगढ़ में मछली उत्पादन के बढ़िया संभावना है और राज्य में तिलापिया क्लस्टर विकसित करे जाते। ओमन बताइन कि राज्य में मत्स्य क्षेत्र के परियोजनाओं पर करीबन 900 करोड़ रूपया खर्चा की मंजूरी दे जा चुके है। राज्य में 2000 ले ज्यादा किसान मल तिलापिया पालन करत है। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में आने सरकारी संस्थान मन में अलग अलग शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा रखे जाही, जेकर परिणाम एक हफ्ता के भीतर घोषित कर दे जाही। ये जानबा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हा आज नवा रायपुर में रखे गए पत्रकार वार्ता में दिन। स्कूल शिक्षा मंत्री हिन कि स्कूल शिक्षा विभाग डहार ले पाछ 2 साल में 2104 शैक्षणिक पद में सीधी भर्ती करे गए है और 5000 ले ज्यादा पद में भर्ती के काम चलत है। ओमन कहिन कि विभाग डहार ले 7000 ले ज्यादा शिक्षक मल्ला आने आने पद में प्रमोशन दे गए है। ओमन बताइन कि बहुभाषी शिक्षा ला बढ़ावा देवत बस्तर संभाग में उन्हें के भाषा के प्रयोग करके शिक्षक मल्ला प्रशिक्षण दे गए है। उन्हें छात्र मल्ला बेरा में मुफत में पाठ्य पुस्तक और ड्रेस दे जाही। एकर अलावा विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम ले स्कूल शिक्षा के आने आने गतिविधि मन के ऑनलाइन निगरानी करे जाते। मुख्य सचिव विकासशील मंत्रालय ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले प्रदेश में जल जीवन मिशन के कामकाज की समीक्षा पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस रखिन। ओमन कलेक्टर मल्ला हर घर नल ले पानी पहुंचाए बर मिशन कोड में काम करे के निर्देश दिन। मुख्य सचिव हा पूरा हो चुके योजना मन के भौतिक सत्यापन कराए और पंचायत मल्ला हस्तांतरित योजना मन के रुके भुगतान ला जल्दी करे बर कहिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार को थी। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में एदारी कोंडागांव जिला में शुरू करेगे हिलल हर्बल गार्डन योजना ऊपर केंद्रित औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम लेके भेंटवार्ता प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 22 अगस्त के आकाशवाणी केन्द्र रायपुर डहार ले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। जिला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केन्द्र एके संग्रह रिले करही। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोड़ा हा काली मंत्रालय में विभागीय अधिकारी मन के बैठक लेके योजना मन के क्रियान्वयन और विकास कामकाज के समीक्षा करें। ओमन नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी मन के टीम के संग रोजेच वार्ड मन में घूम के विकास और साफ सफाई के निगरानी करे बर कहिन। संगे संग बाजार मन में रोजे साफ सफाई बेरा में कचरा उठाए ऊपर ध्यान देके बात कहिन। प्रमुख सचिव आने आने नगरी निकाय मन में बनत 38 ठिन नालंदा परिसर मन के काम ला जल्दी पूरा करे के निर्देश दिन। राजनांदगांव जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सोमनी के सरपंच नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गए है। मतदान के दौरान सरपंच के संगे संग दूजिन पंच वोट नहीं डारिस, जेखर ले अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 16 मत मिलिस और उप सरपंच के पक्ष में एको मत नहीं पड़ीस और अविश्वास प्रस्ताव 16-0 के स्पष्ट बहुमत ले पारित हो गए। प्रादेशिक सेना में राष्ट्रीय स्तर में हैकथान टेरियर साइबर क्वेस्ट के शुरूआत करेगी है। एकर उद्देश्य रक्षा साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में आवत चुनौती ले निपटे बर नवा समाधान

0: चार और सात साल के ये दोनों लड़का मन अपन बाबू के संग तरिया गे रहीन। इस दौरान चार साल के लड़का के पैर फिसले ले ओहा गहरा पानी में चले गए। भाई ल डूबत देख बड़का भाई है घलो बचाए के कोशिश में तरिया के पानी में चले गए। गहराई ज्यादा होए के सेती दोनों भाई के पानी में बुड़े ले मौत हो गई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा में राखे गए चार दिवसीय 26वां राज्य स्तरीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता आज सिरा गई। प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, कबड्डी और क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन के आधार में बिलासपुर संभाग ओवरऑल चैंपियन रही। समापन समारोह में कोरबा सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत बढ़िया प्रदर्शन करैया खिलाड़ी और विजेता टीम ला पुरस्कार देके सम्मानित करीन। ए मौका में ओमन फिजिकल कॉलेज मैदान के जीर्णोद्धार बर 20 लाख और पदगावा में सीसी रोड बनाए बर 10 लाख रूपया देके घोषणा करीन। राज्य स्तरीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभाग ले 540 खिलाड़ी मन भाग लीन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के मुख्य परीक्षा आज ले शुरू हो गई है। ये परीक्षा 22, 23, 29 और 30 अगस्त तक चलही। परीक्षा बिहनिया 9 बजे ले मंझनिया 12 बजे तक और 2:30 बजे ले 5:30 बजे तक दो पाली में चलत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। सर्वोच्च न्यायालय प्रवेश स्तर के न्यायिक सेवा परीक्षा दे के बारे में विधि स्नातक पर जरूरी 3 बछर के वकालत के बेरा लघटा के करीन 1 साल। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चमोली में हुए घटना में कोंडागांव जिला के 4 झीन मजूर के परिवार वाले मल्ला 5-5 लाख रूपया के आर्थिक सहायता दे के निर्देश दे है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होए के सूचना के बाद परीक्षा निरस्त करे के घटना के जांच भर बनाए गए है समिति। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए अब सुने फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए।

0: बारिश की रिमझिम फुहारें, ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास, हाथों में हो गर्मा गर्म चाय का प्याला और रेडियो पर हो आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीतों की मधुर धुनें, तो फिर बात ही क्या है। इसी खुशनुमा मौसम और सुरीले अंदाज के साथ आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके अपने फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं भी हूँ आपके साथ, आपका अपना रेडियो साथी प्रशांत। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, लीजिए फिर सुनिए मैं आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं दोस्त?
1: मैं रघुवीर मिश्रा बोल रहा हूँ।
0: मिश्रा जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं झारसुगड़ा उड़ीसा से बोल रहा हूँ, झारसुगड़ा जिला।
0: झारसुगड़ा जिला से? अच्छा, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर।
0: तो पहली बार आपने फोन किया?
1: जी सर, ये तीसरी बार है।
0: तीसरी बार है तो आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं?
1: सर सुनता हूँ, फोन इन प्रोग्राम सुनता हूँ सर।
0: अच्छा, फोन इन कार्यक्रम सुनते हैं, और इसके अलावा कोई कार्यक्रम जो आपको अच्छे लगते हो?
1: ये जुड़वाणी मेरे को अच्छा लगता है।
0: युवानी,
1: ये फिल्म का नाम है सबसे बड़ा रुपया, गीत है ना बीबी ना बच्चा
0: ना बाप बड़ा ना भैया। बड़ी अच्छी फरमाइश है, हम खोजते हैं इन गीतों को। ठीक है मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए, मैं आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: अशोक कुमार साहू बोल रहा हूँ।
0: क्या नाम बताएं, फिर से बताएं।
1: अशोक कुमार साहू
0: अशोक कुमार साहू। हाँ साहू जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: करमा चौक लोहारी डीहा जिला कवर्धा छत्तीसगढ़।
0: अच्छा, कवर्धा से बोल रहे हैं,
1: जी करमा चौक लोहारी डीहा।
0: ठीक है। तो साहू जी क्या करते हैं वहाँ?
1: मैं तो खेती किसानी का काम करता हूँ सर जी।
0: अच्छा, किसान है। तो अभी क्या बोए आपने खेत में,
1: धान लगाए हैं सर।
0: और बारिश के क्या हाल है?
1: बारिश तो बहुत अच्छा अपने काम कर रहे हैं सर जी। अभी लगातार बारिश हो रहा है जी।
0: आप खुश हैं?
1: खुश है सर भाई से। जी
0: माने किसान भाई सारे खुश होंगे।
1: जी जी बिल्कुल खुशी का माहौल ही है क्योंकि सावन महीना का फुहार जो दे रहा है ना,
0: जी
1: उस फुहार की वजह से पूरा खेत खलिहान पूरा हरा भरा हो गया है।
0: जी ये फुहारें जो है रिमझिम फुहारें हैं, आपको बड़ा खुश कर रही हैं। किसान भाई सब खुश होंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो है।
1: किसान तो खुश ही है सर जी इस
0: जी
1: स्थिति में।
0: हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज की अधिकता बड़ा मायूस करती है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे साहू जी?
1: सावन महीना लगा हुआ है सर जी, तो इसके आधार पे अगर आपके पास उपलब्ध होगा गीत तो हम बताना चाहेंगे। तो
0: बताइए।
1: नाम है आई मिलन की रात।
0: आई मिलन की रात। अच्छा, कौन सा गीत, कौन सा गीत?
1: ऐसी गीत है, सावन का महीना आया है घटा से बरसा है पानी, ये वाला गीत सुना था।
0: ठीक है, अशोक कुमार साहू जी, आपकी फरमाइश पर हम सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत।

0: हेलो, फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो
0: लीजिए, फिर सुनिए, मैं आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं
0: कवर्धा से। श्रवण जी क्या करते हैं वहाँ पर?
1: टीचर हूँ सर।
0: शिक्षक हैं?
1: मिडिल स्कूल का
0: अच्छा, क्या पढ़ाते हैं?
1: हिंदी और सामाजिक अध्ययन सर टीचर।
0: हिंदी और सामाजिक अध्ययन का शिक्षक हैं आप? तो हिंदी हिंदी में लिटरेचर में कौन सा कवि या आपको ज्यादा पसंद आते हैं, जिनकी कविताएं आपको ज्यादा पसंद आती हैं, ऐसे कौन से कवि हैं या लेखक ऐसे कौन से हैं?
1: मुंशी प्रेमचंद जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं।
0: जी, तो कोई मुंशी प्रेमचंद की कोई खास उपन्यास आपके हृदय को टच करती हो बताएंगे हमें?
1: गबन है, बोलांग है,
0: हाँ, ये
1: ये
0: उनके
1: मैंने पढ़ा हूँ सर।
0: ये उपन्यास है उनके ना, पूस की
1: गबन
0: रात,
1: उपन्यास
0: गबन, गोदान, ये सब
1: हाँ।
0: प्रेमचंद जी के मशहूर उपन्यास हैं।
1: और ये
0: और
1: माखनलाल चतुर्वेदी जी का है,
0: जी
1: जो है जो देशभक्ति है
0: जी
1: उस पर फूट फेंक देना वनमाली वाला जो है,
0: जी
1: मातृभूमि पर चढ़ जाऊं, ये वाला जो है कविता
0: हाँ,
1: मेरे
0: ये
1: को
0: तो
1: काफी
0: दुर्लभ
1: पसंद
0: दुर्लभ कविता है, पुष्प की अभिलाषा।
1: है। पुष्प की अभिलाषा है
0: जी ठीक है,
1: उनकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा है। जहाँ पर फूट है वो जो मेरे देशभक्ति है, सैनिक की जिस पद पर जाए उस
0: वीर अनेक।
1: विधेयता जो
0: हाँ
1: है उनकी जो कामना है, ये मेरे को मालूम का बहुत ही देश प्रेमी लगता है सर।
0: जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: आज मुझे एक फिल्म बेमिसालों का सुना दीजिए सर कि कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर।
0: कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है।
1: हाँ
0: ठीक है श्रवण जी, आपकी पसंद पर हम सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए अपने रेडियो सेट्स पर। हमसे बात करने के लिए
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोनिंग कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए, मैं आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: राम कुशल पटेल बोल रहा हूँ सर, हैदराबाद से।
0: हैदराबाद से बोल रहे हैं? क्या बात है राम किशोर जी।
1: हाँ सर,
0: तो
1: आपका कल इंग्लिश शुरू होता है सर, हम रायगढ़ का।
0: अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। तो राम किशोर पटेल जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हैदराबाद में ही रहते हैं या रायगढ़ से हैं आप?
1: नहीं सर, मेघा पारा लोरमी के हैं, हैदराबाद में रहते हैं।
0: अच्छा, लोरमी के हैं।
1: हाँ
0: तो
1: सर,
0: वहाँ
1: मेघा पारा
0: वहाँ
1: लोरमी अपना गांव।
0: जी, तो क्या करते हैं वहाँ हैदराबाद में?
1: यहाँ मिस्त्री काम करते हैं सर।
0: मिस्त्री? कौन से गाड़ी बनाते हैं या कार?
1: नहीं,
0: कार?
1: ब्रिक वर्क वाला सर, घर मकान बनाने वाला सब।
0: अच्छा, मकान बनाने मिस्त्री हैं, राज मिस्त्री हैं आप।
1: हाँ सर,
0: तो कब से आप हैदराबाद में हैं?
1: इधर यहाँ तो 6 साल हो गए सर लगातार।
0: अच्छा, 6 साल हो गए। और आपकी
1: हाँ
0: आपकी फैमिली लोरमी में है?
1: नहीं, यही है, बच्चे लोग घर में है, सब पढ़ रहे सर, चार बच्चे अपना चारों घर में पढ़ रहे।
0: अच्छा, यहाँ लोरमी में।
1: हाँ
0: जी ठीक है। तो राम किशोर जी बताइए, आज कैसे फोन किया, क्या गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज वो गीत सुने सर, घर आ जब परदेसी तेरा देश बुलाए रे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसमें क्या है सर।
0: ठीक है राम किशोर जी, आपकी फरमाइश हम शामिल करते हैं। हमसे हमें फोन करने के लिए बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: सर।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम, लीजिए फिर सुनिए। इसका दूसरा भाग आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे से FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का, ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।

0: अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि शासकीय स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर परीक्षा निरस्त कर घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई। और उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम में छत्तीसगढ़ की युवा केंद्रित अर्थव्यवस्था और निवेश की संभावनाओं का रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को 8 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक 5,000 स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देने की योजना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 500 करोड़ रुपए का राज्य AI मिशन शुरू किया जा रहा है। नव रायपुर में करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से AI डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में सुरक्षा की स्थिति में सुधार के बाद विकास, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय और अन्य सरकारी संस्थानों में अलग अलग शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों पर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका परिणाम 1 सप्ताह के भीतर घोषित किया जाएगा। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आज नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के पिछले 2.5 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में 1,895 पदों और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में 1,171 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के 10,538 सरकारी स्कूलों को तर्कसंगत किया गया है। वहीं शिक्षकों के 5,000 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में FIR दर्ज करा दी गई है।
4: हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति AG मसीह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अविलक्ष लेखी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य किसानों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। कल रायपुर में

आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं और राज्य में तिलापिया क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। श्री लेखी ने बताया कि राज्य में मत्स्य क्षेत्र की परियोजनाओं पर करीब 900 करोड़ रुपए व्यय और स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन और निर्यात क्षमता मजबूत करने के निर्देश दिए। राज्य में 2000 से अधिक किसान तिलापिया पालन कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में पिछले सप्ताह सुरंग हादसे में लापता दो श्रमिकों के शव में से एक की पहचान छत्तीसगढ़ के चेतन पोयाम के रूप में हुई है। इसके साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इस हादसे में कोंडागांव जिले के ग्राम धनसुली के दो, मदनार के एक और दही कुंगा के एक श्रमिक की मृत्यु की पुष्टि पहले ही हो चुकी है, जबकि जिले के दो श्रमिक घायल हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में कोंडागांव जिले के चार श्रमिकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये तथा हादसे में घायल दोनों श्रमिकों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा आज से आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा 22, 23, 29 और 30 अगस्त को भी आयोजित होगी। परीक्षा सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक दो पालियों में हो रही है। राजनांदगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोमनी की सरपंच नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। मतदान के दौरान सरपंच सहित दो पंचों ने वोट नहीं डाला। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 16 मत प्राप्त हुए, जबकि सरपंच के पक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा और अविश्वास प्रस्ताव 16-0 के स्पष्ट बहुमत से पारित हो गया। गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के पिंडरम में आयोजित 4 दिवसीय 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, कबड्डी और क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बिलासपुर संभाग ओवरऑल चैंपियन रहा। समापन समारोह में कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। धमतरी के लाइवलीहुड कॉलेज में जनजातीय कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से एक दिवसीय जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेला आयोजित किया गया। इस मेले में जिले के 20 कलाकारों और कारीगरों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। मेले में पात्र कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, वन धन विकास केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों और जनजातीय उद्यमियों को ट्राइफेड से सूचीबद्ध होने का अवसर दिया गया। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कल मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को टीम के साथ रोजाना वार्डों का भ्रमण कर विकास और सफाई कार्यों की निगरानी करने को कहा। साथ ही बाजारों में नियमित सफाई, समय पर कचरा उठाने और कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। प्रमुख सचिव ने विभिन्न नगरीय निकायों में बन रहे 38 नालंदा परिसरों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर पेयजल, शौचालय और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में कल शाम तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया गया है कि 4 और 7 वर्ष के दोनों बच्चे अपने पिता के साथ तालाब गए हुए थे। इसी दौरान 4 वर्षीय बच्चा फिसलकर गहरे पानी में चला गया। छोटे भाई को डूबता देख बड़े भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण दोनों भाई डूब गए। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार कोंडागांव जिले में शुरू किए गए हीलर हर्बल गार्डन योजना पर केंद्रित औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 22 अगस्त को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत,
उद्योग अनुसंधान

0: संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस पहल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता सहित उभरते क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 31 अगस्त तक कराया जा सकता है, वहीं ऑनलाइन चयन 1 से 10 सितंबर तक किया जाएगा, जिसके बाद ग्रैंड फिनाले नई दिल्ली में 6-8 अक्टूबर को आयोजित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि शासकीय स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर परीक्षा निरस्त कर घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई और उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने फोन इन कार्यक्रम का शेष भाग।
1: हेलो, फोन इन कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए, मैं आपका स्वागत है।
2: हाँ सर, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं?
2: परमेश्वर बोल रहा हूँ सर, डोंगी तराई से।
1: परमेश्वर डोंगी तराई से बोल रहे हैं?
2: हाँ सर।
1: क्या करते हैं परमेश्वर जी?
2: कंपनी में काम करते हैं सर।
1: कंपनी में काम करते हैं? कैसा काम करते हैं?
2: कंपनी का ऑपरेटिंग का।
1: ऑपरेटिंग करते हैं?
2: हाँ
1: क्रेन क्रेन वगैरह ऑपरेट करते हैं?
2: हाँ, सर्किट का है जो पावर प्लांट में।
1: जी जी, तो घर में कौन कौन है आपके?
2: घर में सभी हैं सर।
1: शादी होगी आपकी?
2: हाँ है, ना बिल्कुल बच्चे हैं।
1: अच्छा,
2: शादी हो गए हैं
1: जी, कितने बड़े बच्चे हैं?
2: अभी 9 महीने का हुआ है सर, 1 साल नहीं हुआ है।
1: अच्छा, छोटा बच्चा है।
2: छोटा बच्चा।
1: ठीक है ठीक है, चलिए। और घर में और माँ पिताजी कुछ काम करते हैं या?
2: हाँ अभी घर में रहते सर, घर का खेती काम करते
1: खेती वगैरह करते हैं? आपका खुद
2: हैं।
1: खुद का खेत है?
2: हाँ खुद का खेत है।
1: तो क्या उगाया अभी, क्या फसल बोई है?
2: अभी लगाए हैं सर धान का।
1: धान, बारिश वगैरह ठीक है?
2: ठीक है सर, अभी तो बारिश हो रहा था। ठीक,
1: जी बताइए परमेश्वर जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
2: सावन आया बादल छाए।
1: परमेश्वर जी ठीक है, हम आपकी फरमाइश शामिल करते हैं। हमें हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ, फोन इन कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए, मैं आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं दोस्त?
1: मैं राजा राजपूत बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं राजा जी आप?
1: रायगढ़ बैकुंठपुर से बोल रहा हूँ।
0: बैकुंठपुर से बोल रहे हैं।
1: जी
0: तो राजा जी क्या करते हैं?
1: मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, शिक्षा विभाग में।
0: शिक्षा विभाग में। कब से
1: जी
0: हैं?
1: जी लगभग मैं 15 साल हो गए हैं।
0: 15 साल। और रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद है रेडियो सुनना।
0: अच्छा, और घर में कौन कौन है?
1: पूरा भरा पूरा परिवार है, माता जी हैं, बाकी बच्चे हैं, वाइफ है, सब है।
0: तो बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बच्चे एक 9th क्लास में है, बाकी 2 5th क्लास में है।
0: अच्छा, यानी थोड़े बड़े हैं।
1: जी जी जी जी
0: ठीक
1: जी
0: है,
1: बड़े हैं।
0: तो राजा जी, आज आपने फरमाइश की, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: पुराने गाने जैसे मेघा रे मेघा रे।
0: अच्छा, प्यासा सावन का गीत, मेघा रे मेघा रे।
1: जी, प्यासा सावन का गीत है, बहुत प्यारा गीत है,
0: ठीक है,
1: वो
0: तो
1: सुनाने से
0: आप
1: बहुत अच्छा होता है।
0: ठीक है, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। सुनिए अपने रेडियो सेट पर। हमें हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी, मैं अलका सिन्हा बोल रही हूँ।
0: अलका जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं झारखंड से बोल रही हूँ, झारखंड रांची से बोल रही हूँ।
0: झारखंड रांची से बोल रही हैं। तो वहाँ तक हमारे कार्यक्रम जाते हैं, सुनते हैं आपका।

0: क्यों
1: हाँ
0: हमारे?
1: हाँ जी बिल्कुल, मैं सुनती हूँ, हमेशा सुनती हूँ, तभी तो मैंने आपको कॉल भी किया है। और बहुत अच्छा लगता है आपके सारे प्रोग्राम गानों का जो आपका सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है सुन के।
0: चलिए, अच्छा लगा सुन के। और क्या करते हैं वहाँ आप?
1: जी मैं, मेरा बुटीक है,
0: जी,
1: मैं वही ऑपरेट करती हूँ।
0: कैसा है मौसम आपके झारखंड में, रांची में?
1: हाँ एक्चुअल अभी क्या है ना कि बारिश बहुत हो रही है, लगातार ही हो रही है, लेकिन बारिश में एंजॉय करते हैं, मजा आ रहा है।
0: चलिए, अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहूंगी, देखा एक ख्वाब तुझे।
0: सिलसिला फिल्म का गीत। ठीक अलका जी, हम आपकी फरमाइश पर आप सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का गीत फिल्म सिलसिला से।
1: थैंक यू सर,
0: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।

0: दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए केवल आवाजें ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे कई लोगों की मेहनत और तकनीकी सहयोग भी शामिल होता है। यानी कहते हैं ना, बिहाइंड द स्टेज भी कई ऐसे साथी होते हैं जिनके सहयोग से हमारे ये कार्यक्रम आप तक सुचारू रूप से पहुंच पाता है। कार्यक्रम को तकनीकी सहयोग प्रदान किया पंकज धवलकर ने, और आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे रवि आनंद। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रहा रामविलास पटेल का, और आज पूरे कार्यक्रम के दौरान आपसे बातें करता रहा, आपकी फरमाइशें सुनता रहा और आपके पसंदीदा गीतों तक आपकी आवाज पहुंचाता रहा मैं, यानी आपका रेडियो दोस्त प्रशांत। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे एक नई मुलाकात एक नए अंदाज में, नई फरमाइशों और नए गीतों के साथ। तब तक सुनते रहिए 100.7 FM यानी आकाशवाणी रायगढ़ को। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी प्रशांत। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम, लीजिए फिर सुनिए। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

संझा के बेरा म चौपाल सुनया जम्मो संगवारी मल्ला आप मन के मयारू संगी सुशील प्रधान को तिले राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। किसान भैया हो, बरसात के मौसम चलत हवे तो ऐसने मौसम में हमर देह पान के संगे संग हमर जो छोटे छोटे लोग लैका मन हवे ए मन के सेहत के विशेष ध्यान राख। संगे संग जोन संगवारी मन गाय गोरु कुकरी चिमरी पाले हव तो ओ संगवारी मन ला भी चेताना चाहबो कि ऐसने मौसम में उमन के सेहत के विशेष ध्यान रखना पड़ते। और मौसम के क्रम कोती जाबो संगवारी हो तो आज के जो अधिकतम तापमान रहीस ओहर रहीस 28 अंश सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 25 अंश सेंटीग्रेड, आर्द्रता बिहनिया 7 बजे रहीस 90%, जोन हर दोपहर 2 बजे घट के 83% होइस हवे। हवा की गति 0.3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले दक्षिण ले पश्चिम दिशा कोती बुहात रहीस। और पिछले 24 घंटा में 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज करेगी से। और ये जानकारी हमला मिलते कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बोईदादर रायगढ़ के जो कृषि मौसम वैद्यशाला हवे, कृषि वैद्यशाला के यंत्र मन के हिसाब से ये जानकारी हमला प्राप्त होते। और आज के जो बात के विषय हवे संगवारी हो, आज के बात के विषय हवे किसानों की उन्नति में मददगार मशरूम की खेती। किसान भैया हो, आप मन जानत हव कि मशरूम के जो खेती है यह ऐसने व्यवसाय है जोन हर की कम जगह और कम लागत में और कम समय में यह बढ़िया उत्पादन देवैया फसल हवे। इ खेती पर ज़्यादा भुइयां की जरूरत नहीं पड़े और कम जगह में घलो यह बढ़िया उत्पादन करे जा सकत है। खास करके जैसे छोटे किसान सीमांत किसान मन है एमन बर मशरूम की खेती हर रोजगार और अतिरिक्त आय कमाए के बढ़िया जरिया बन सकत है। मशरूम हर एक ठीन पौष्टिक खाद्य पदार्थ हवे जोन में कि प्रोटीन विटामिन खनिज और जरूरी पोषक तत्व हर भरपूर मात्रा में पाए जाते। आजकल लोगन मन के बीच में पौष्टिक भोजन के मांग बढ़त जात है, एकर सेती मशरूम के जो बाजार है एहर घलो लगातार बढ़त जात हवे। और किसान भाई मन मशरूम के ज्यादा उत्पादन करके स्थानीय बाजार होटल दुकान और मंडी में बेच के बढ़िया आमदनी कमा सकत है। और बहुत अच्छा यह खेती हवे, कम समय में यह तैयार हो जाते तो संगवारी हो एकर भी आप मन खेती कर सकत हो। और आज के नसीहत के विषय हवे सफलता के लिए कृषक किसान उत्पादक संगठन से जुड़े। संगवारी हो,

0: हमर देश के अर्थव्यवस्था में खेती किसानी के बहुत बड़का योगदान हवे। गांव के किसान मन अपन मेहनत ले लेके देश बर अन्न फल सब्जी और दूसर कृषि उपज के उत्पादन करते हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसान मन ला बाजार बीज खाद तकनीकी जानकारी और उचित दाम नहीं मिले खातिर बर कई तरह की परेशानी के सामना इमला करना पड़ते। ये जम्मो समस्या के समाधान करे बर किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO ले जुड़ना बहुत ही उपयोगी साबित हो सकत है। कृषक किसान उत्पादक संगठन जोन ला कि FPO कथन, हर किसान मन के एकजुट समूह हवे जेकर माध्यम ले किसान मन मिलजुल के अपन कृषि उपज के योगदान, कृषि उपज के उत्पादन संग्रहण प्रसंस्करण और बिक्री एमन कर सकत हैं। अकेला किसान जोन कामला नहीं कर पाए ओला संगठन के माध्यम ले आसानी ले करे जा सकत है। किसान मन के सामूहिक शक्ति ले सौदेबाजी के क्षमता बाढ़ते और उपज के सही दाम पाए के संभावना घलो बाढ़ जाते। तो संगवारी हो, समय और बखत बेरा के हिसाब से हमला चलना हवे। और तो आज के जो किसान हवे, आज के किसान हमें मधुबन पारा विकास खंड रायगढ़ के कृषक कमल उरावले कम जगह और कम समय में ज्यादा उत्पादन मशरूम की खेती विषय में मोर बातचीत होइसे। तो संगवारी हो, चलनी सुनबो आज के किसान। किसान भैया हो, हमारे आकाशवाणी के सार्थक प्रयास की प्रगतिशील कृषक और ग्रामीण विकास तो एक क्रम में हमन ऐसने संगवारी मन ठीक चर्चा करथन जोन मन की बढ़िया तौर तरीका ले कोई भी व्यवसाय अपनाते हैं और समय और बखत बेरा के हिसाब से अभी आनी बनी के व्यवसाय अपनात हमें हमारे संगवारी मन धान के अलावा अतिरिक्त आय कमाना है तो आनी बनी के व्यवसाय अपनाना है जोन में कि मछली पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, लाख के उत्पादन है, गेंदा फूल के खेती है। इकरे संगे संग कम जगह और कम लागत लगा के देवया फसल हवे पैरा मशरूम के खेती। तो आज हमर बीच ऐसने युवा उपस्थित हवे जोन मन की पैरा मशरूम के खेती करत हैं और लाभ लेत हवे। तो संगवारी हो, आवा जानबो उमन के विचार ला। तो सबसे पहले किसान भैया आप मला राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार।
0: हाँ, तो किसान संगवारी आप मन के नाम बताहा, आप मन के गांव के नाम बताहा।
1: मोग नाम कमल उगावे, मैं मधुबन पागा रायगढ़ विकास खंड में गत हूँ, जिला रायगढ़ में आते हैं।
0: हाँ, तो संगवारी अभी जैसे मशरूम के जो खेती है कहो,
1: हाँ
0: तो एला कतक साल ले आप मन करत हो?
1: मैं एला कम से कम 2-3 साल ले कगत हूँ।
0: तो जैसे कछु भी हमन खेती करथन तो बात आते कर तैयारी के कह, तो मशरूम के खेती बर माने का चीज के आवश्यकता पड़ती?
1: देखा, मशरूम के खेती बर हमन ला ना सबसे पहले पैगा मशरूम है तो पैगा के आवश्यकता पड़ते, फिर ओकर बाद ना उमे चूना के आवश्यकता पड़ते हमन ला, और बेसन के आवश्यकता पड़ते और बीज और क्या कहते टंकी बनाबे ना हमला पन्नी, अगर जाकर यहाँ पहले ले टंकी बने बुनाल है ना, पैगा डुबा के रखे पड़ते तो वाला पन्नी की जरूरत नहीं पड़े, और जहाँ टंकी नहीं वहाँ पन्नी की जरूरत पड़ती है टंकी बनाए।
0: अच्छा, तो ये जैसे छोटे छोटे चीज के में एकर उत्पादन माने शुरू हो जाते कहो?
1: हाँ हाँ, मतलब बहुत कम समय में ना अच्छा उत्पादन है और जल्दी उत्पादन हो जाते हैं। और कोई फसल लगाई है तो वाला उत्पादन हो बहुत टाइम लगा थे, फिर वाला बेचे बग इलाका कम समय में ये 15-20 दिन बाद तुरंत उत्पादन हो जाही, बढ़िया से हम एक सकत हन के बिक्री।
0: तो एकर जो लगाए के विधि है कहो, माने कैसे विधि ले मन एला लगा लगा था, एला विस्तार ले बताहा।
1: हाँ, एक विधि ज्यादा बड़े नहीं है, सिंपल है, आसान है, बहुत जान जा गया। देखा, सबसे पहले हमारा पैगा लेना पड़ते है, ठीक है, पैगा लेना बंडल बना बना के एक एक मुठ्ठा मुठ्ठा ऐसे बंडल बनाना पड़ते है। तो हाँ, का करथन ये पैगा लेना चूना पानी लेथन, उमे ना गात भाग एक टंकी बनाथन, और जाकर पहले टंकी तो मैं गात भाग ना चूना पानी में पैगा डुबो के रख देना है, तहाँला सुबह ना बोला सुबह निकालबो तहाँला ना बोला ये कर दे बोला अलग से वाला पानी लो कर निथाकबो।
0: अच्छा,
1: तो वाला ना रख देगा थन।
0: तो ये हर माने उपचार हो जाते कहो?
1: हाँ हाँ,
0: माने चूना के पानी में इला उपचार
1: कर
0: था?
1: हाँ, उपचार कर थन।
0: हाँ, हाँ,
1: कुछ कुछ बैक्टीरिया का थोका पैगा के हिसाब से वो खत्म हो जाते हैं, वो अच्छा हो जाते हैं। हाँ, ओकर बाद का करथन ओला ना एक ठो ये बनाथन रेक बनाथन।
0: अच्छा।
1: ठीक है, हाँ, लोहा के ऐसे कुछ के या बांस के भी, बांस जैसे सुविधा एक ठो रेक बनाथन। तहाँ पैगा ला ना तीन भाग में तीन तीन लेयर बना के एक के ऊपर एक कैसे हम जमा देथन। ठीक है, तहाँ ओमे का करथन बेसन और बीज ला अपन हिसाब से किनारे किनारे ताकि एक दूसरे के सटे मत करके ओला जमा जमा के रख देथन। ठीक है, तहाँ ओकर बाद का करथन ये जमा के रख देन, तहाँ यह हमन ला जो हफ्ता भर के अंदर मैंने कम से कम ये लग जाते समझ जाओ। हल्का हल्का दिखना चालू हो जाते हैं। तहाँ हफ्ता भर बाद दिखिस के बाद धीरे धीरे 15 से 20 दिन बाद हमारा मशरूम निकल जाते हैं।
0: अच्छा,
1: बस मशरूम निकली तहों के बाद हमन वाला का करना है, अब बोला अपन का कहते हैं अच्छा उत्पादन हो गया तो हमला तो बेचना अच्छे, अब अपन पहले खा लो। यह का होते कि फसल है एक बार लगाबो ना तो तीन तीन बाग है फसल से, एक बार मतलब निकालें तोड़ें तहों के बाद फिर ऐसे का तीन बाग हमारा मिल जाते उत्पादन का। एक
0: बार लगाओ के बाद जैसे मैंने तीन बार तोड़ना है।
1: हाँ, तीन बार तोड़े
0: तो शुरुआत में जैसे तैयार होगी इसका।
1: हाँ,
0: तो पता चल जात रही कहा मशरूम माने तैयार होगी।
1: हाँ, हाँ, तो भाग में दिख जही हो हम लोग।
0: हाँ, तो किसान संगवारी जैसे बहुता माने देखे बर मिलते सुने बर मिलते कि मशरूम के बीज के जो उपलब्धता में परेशानी होते, तो एकर बीज ला आप मन कहाँ ले लान था?
1: ये बीज ला हम लोग कहा कि ना आस पास नहीं मिल पाए हमारे रायगढ़ में, तो हमारा उड़ीसा से मंगा था, वहाँ के बीज में थोड़े अच्छा गए थे। ये बीज है ना हमारा एक ठो बाटल में डाल के बेचते हैं, वाला वही 30-40 रुपए के आसपास लेते हैं। एक ठो पन्नी में गए, एक किलो के गए, वाला 120 रुपए लगते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कहा कि ना ज्यादा तो बाटल के लिए निकाल के डाले में थोड़ी परेशानी जाते, तो हम पन्नी में लेते हैं, पन्नी वाला बोला मस्त फाड़ा तो आसानी पड़ते हैं, तो हम फाट के अपन लगा लेते हैं।
0: तो कतका बढ़िया आप मन देख मतलब मशरूम पैरा मशरूम के आप मन खेती करत हो, बढ़िया लाभ लेत हो, तो एमे बेचे के माने कैसे सुविधा है?
1: बेचे के सुविधा है आसान है, इलाका की ऐसे चीज़ है पौष्टिक आहार है, शुद्ध शाकाहारी है, तो बहुत आदमी ला जानते हैं, अब आस पास मोला में लगा थो तो सब जानते हैं। तो जैसे लगा थो तो कब हो कब उल्टा पूछे बगत है ना, तो हम पुगा नहीं सकन, तो इलाका है कि आस पास ऐसे ही बिक जाते हैं और डिमांड पे डिमांड आते रहते हैं और मांग आते रहते हैं, मैंने ऐसे बेच देते हैं और नहीं लगे परेशानी नहीं जाए बेचे में, गाय के भागे चकक देते हैं तो ज्यादा गाते तो तुगन तुगन ले लेते हैं।
0: अब ऐसे भी देखा जाए तो मशरूम हर बहुत ही प्रोटीन और विटामिन पौष्टिक आहार है कह। तो कतका बढ़िया आप मन एकर उत्पादन लेत हो, बढ़िया लाभ कमात हो। तो आप मन के विचार ला हमन कार्यक्रम के माध्यम से और श्रोता संगवारी मन तक साझा करबो। तो आप मन के जैसे युवा संगवारी मन किसान संगवारी मन किसानी दाई बहनी मन आप मन के विचार ला सुनत रही।
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ।
0: संगवारी मन ला आप मन का विचार देना चाहिए?
1: मतलब विचार देना चाहत हूँ कि जाकर कहना जैसे बड़े जगह नहीं है तो कम जगह में भी अच्छा उत्पादन और ही जल्दी उत्पादन, जैसे कई आदमी लोग पैसा फंसा है और 2-3 महीना बाद का कहते हैं ये मिली फल मिले कल अच्छा ये पैगा मशरूम करके कम से कम मिला महीना भर के अंदर के कर रिजल्ट आ जाए अपन के क्या कहते हैं जो भी लगाए पैसा मूल समेत पूरा वापस आ जाए, पूरा फायदा भी है, में खाएबा भी काम है, बेच के भी अच्छा से अपन के जिंदगी मतलब आगे रोजगार चला सकत।
0: जैसे कोई किसान व्यवसायिक रूप ले लगाना चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप लगा सकत।
1: हाँ, लगा सकत।
0: एक ठीहर जैसे खत्म हो तीन बार तोड़े खत्म होगी तो फिर दूसरा स्टेप करके मैंने निरंतर यहाँ चलत रही। किसान भैया कतका बढ़िया सारगर्भित विचार दे, तो निश्चित रूप से आप मन के विचार सुन के हमारे श्रोता संगवारी मन किसान संगवारी मन लाभान्वित हुई, अतक बढ़िया जानकारी देव एक खातिर पर आप मन बहुत बहुत धन्यवाद और आप मन राम राम जय जोहर
1: जय जोहर।
0: हाँ, तो संगवारी हो अभी सुनत रहें आज के किसान ये मन कतका बढ़िया मशरूम के खेती करके बढ़िया आजीविका चलात हवें। बखत बेरा है संगवारी हो कृषक प्रश्न मंच के, तो कापी पेन लेव और आज के प्रश्न लिख। प्रश्न हवे एफपीओ के पूरा नाम का हवे? संगवारी हो प्रश्न एक बार फिर से बोलत हव, एफपीओ के पूरा नाम का हवे? आप मन के सही उत्तर लिख भेजी है और बखत बेरा के हिसाब से हमला दिन बार के हिसाब से चलना हवे। तो आज दिन हवे शुक्रवार और हमार खास कार्यक्रम होते हैं हमार लोकगीत के, लेकिन एकर पहले सुन लें संदेश।
2: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
4: हेलो रायगढ़, क्या आप भी एक नीट एस्पिरेंट हैं और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं? तो मार्गदर्शक लेकर आ रहा है आपके अपने शहर रायगढ़ में एक फ्री MBBS एडमिशन गाइडेंस सेमिनार, जहां हम आपको बताएंगे MBBS एडमिशन की सारी जानकारी इंडिया और अब्रॉड के कॉलेजेस के बारे में, जैसे कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, लो बजट ऑप्शन एंड कम्प्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो हमें ज्वाइन कीजिए इस रविवार 23 अगस्त को होटल रेड क्वीन में सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक।
5: कॉल करें 7049304956 एवं 6265230652 पर।
0: संगवारी हो आज दिन हवे शुक्रवार और शुक्रवार के हमार खास कार्यक्रम होते हमार लोकगीत की, तो मैं हवा आप मन के मयारू संगी।

स्टील प्रधान, सब्बो झनला कहत हव राम राम जय जोहार। लोक संगीत हमर जीवन के अमूल्य अंग हवे और ये क्रमला हमर संगवारी मन ईमेल के माध्यम ले फरमाइश करे रथे। गीत के बोल हवे भगवान बसे तोर मन म कहाँ खोजे बर जाबे रे, गायक हवे पद्मलोचन जायसवाल और साथी के और एला पसंद करवैया संगवारी हवे छत्तीसगढ़ सहसपुर ले छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, राम किशन साहू, दुली चंद शशिबाई साहू, तिहारी साहू, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, ग्राम पुटकी कला कवर्धा ले राधे श्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, पलारी छत्तीसगढ़ ले हवे नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, ग्राम पुरेना खरपी बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ ले हमें केशव प्रसाद साहू, अनीता साहू, अनुष्का साहू, उषा साहू। यही लोक गीत के पसंद करोया संगवारी ईमेल भेजिन हमें बेला डीला बस्तर छत्तीसगढ़ ले शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमिला, यमुना, जमुना कुमारी, अंजू मंजू और कुमारी युति देवदास। ग्राम गोडमर्रा पोस्ट सूर्य गांव तहसील डोंडी लोहरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ ले देवदास, देव प्रसाद देवदास, राम अवतार देवदास, सोनू मोनू और कुमारी ललेश्वरी देवदास। सावर गांव महाराष्ट्र ले रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पा ताई नारे, अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, चंचल केवट और रायगढ़ वार्ड नंबर 3 ले रोहित जयलक्ष्मी। तो संगवारी हो आपन के पसंद के लोकगीत ला सुनबो, तो चली सुनी आपन के पसंद के लोकगीत।

फरमाइशी लोकगीत के क्रम में ईमेल करीन हवे और स्वर हवे ले दे नौलखिया हारे हो मयारू और एमन भेजीन हवे हटौत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ ले दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ ले हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। रानी गांव नगरी जिला धमतरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्रलेखा साहू, शुभम सेजल साहू। धमनी राजीम समयलाल धीवर, मुन्नी धीवर, गोविंद धीवर, ममता धीवर, कुणाल धीवर, युवांशु युवांश धीवर। तो संगवारी हो सुनबो और सुनाबो आप मन के पसंद के लोकगीत।

हाँ तो संगवारी हो, लोकगीत बहुत सुघ्घर रहीस और यही क्रम में ईमेल करीन हवे, स्वर हवे सावन के ठगबुंदिया पानी कस और भेजोया संगवारी मन हवे नान घाट कातल बोडले भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतुराज राजपूत, रोहासी पलारी जिला बालोदा बाजार ले श्यामलाल साहू युवराज साहू, अडार नान घाट ले माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा, माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी ले राम कुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल मिलन यादव राम सिंह मरावी अशोक मरावी बल्लू चमकी, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र ले संतोष खटसे और विनोद खटसे के, नगर टोड़ा छत्तीसगढ़ ले महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, भाटापारा छत्तीसगढ़ ले हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू चंपा साहू, माँ बमलेश्वरी धाम साकरी सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले हमें नारायण लाल साहू कुलवंती देवी साहू मिलिंद कुमार साहू प्रणय कुमार साहू रुद्रांश प्रताप साहू नेहा देवी साहू दिवेंद्र प्रताप साहू, तो संगवारी हो आओ सुनबो आप मन के पसंद के ये लोकगीत।

0: मंतरसे तोर दरस बिना मोर बैरी कलप कलप मंतरसे।
1: लोकगीत बहुत सुघर लगिस और यही क्रम में फरमाइशी भेजिन हमें। गीत के बोल हवे उठे धरा बादर के, स्वर दिन है ध्रुआ राम मरकाम और दुखिया बाई के, और पसंद करुया संगवारी हमें खपरी कुठेला भाटा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ले चेतन लाल साहू, टिकेश्वरी देवी साहू, प्रतीक कुमार, राहुल मोहित कुमार साहू, दुर्गा प्रसाद साहू, गंगा देवी साहू, रेवा राम साहू, कौशल्या देवी साहू, साल्हे भाटा महासमुंद ले जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण दिव्यांशी, खेमू ध्रुव, चांदनी चौक गंडई पनरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की बिक्की नानू, रविन्द्र रोनक सेन, नयागंज वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ ले विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, हर्ष साहू, कुमकुम साहू, योगेश्वरी साहू, बागबहरा भदरसी ले पन्ना लाल सेन, खुशबू देवी सेन, तारा सेन, कौशल सेन, सुंदरपारा रोहासी ले डगेश्वर राम साहू, नूतन साहू, अलका, जानवी, गौरव, घनश्याम साहू। यही गीत के फरमाइशी भेजिन हमें ग्राम बुड़गहन, गुड़गहन छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति।

चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांत प्रजापति। यही गीत की फरमाइशी भेजी हमें ग्राम खट्टी, महासमुंद ग्राम खट्टी ले सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, ऐशोराम साहू, मालती साहू, लोकेश साहू, बाजार पारा बेमेतराले भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा, कोष्टा पारा जुड़वा चौक ग्राम पंचायत सरंग पाल ले भागवत देवांगन, पदुम देवांगन, कुमारी सुनेना, पिंकी, गीता, यश, चित्रा, प्रियांशी, तन्वी, नीता, चंद्रवती, सरस्वती, पुन्नी, अमित, नोमेश, युवराज, घासी मामा, सलाम, गांव पटेल, भाई रामचंद्र जी देवांगन और समस्त देवांगन परिवार। धरसीमा ले छोटूलाल यादव, छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नू लाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण, सी एल यादव। यही गीतला पसंद करोया संगवारी हमें। शिवाजी चौक राजीम ले अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग ले पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति, छाया बंछोर। महासमुंद ग्राम खट्टी ले सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, प्रेमलता उपाध्याय, खुशी उपाध्याय, खुशबू उपाध्याय। देवरी भाटापारा ले गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। अरमरी खुर्द जिला दुर्ग ले चूरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे, विवेक कुमार वार्डे, नेहा वार्डे। तो संगवारी हो आओ सुनबो आपमन के पसंद के ये लोकगीत।

लोकगीत बहुत सुघर लागिस और यही क्रम में चिट्ठी के माध्यम ले फरमाइशी भेजिन हमें। गीत के बोल हवे, अब बस्तर के दिन आगे संगी कही देबे प्रिया ला संदेश, और स्वर हवे अलका चंद्राकर के, और एला चिट्ठी के माध्यम ले भेजिन हमें। श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम।

लर गांवले मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन, रुआ बांधा सनिश्चरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन, कल्पना जैन, सया जैन, सौरभ जैन, सौर्य जैन, शुभम जैन, लेवई ले गुलाब दास मणिकपुरी, लक्षनपुर ले विश्वनाथ साहू, भिलाई ले मुकेश शर्मा, दतरेंगी ले भागवत वर्मा, ग्राम बंगला मटिया बालौद ले शिव कुमार अंगारे, अजनी त्रयंबिका, लीना अंशु, आशुतोष अंगारे, महामायापारा ग्राम दरचूरा ले फिरंता साहू, दुलौरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, जेलपारा जेल रोड रायगढ़ ले भाई नरेंद्र कुमार तिवारी, गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास, अमरपुर पेंड्रा ले दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिव्यांश रूही और लवी श्रीवास, झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ ले लक्ष्मण बाधवानी, श्रीमती विमला बाधवानी, हर्ष खुशी और शुभम बाधवानी, पटेल नगर मलोट पंजाब ले डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। तो संगवारी हो, सुनबो आप मन के पसंद के लोकगीत।

हाँ संगवारी हो, अभी सुनत रहें लोकगीत और आज के खास कार्यक्रम हमर लोकगीत के जोन में कि आप मन के फरमाइशी लोकगीत पसंद कर रहा था ओला सुनाथन और एकर समय अभाव खातिर वर एकर पूरा माने हमन आप मन ला नहीं सुना पाए हन तो एकर बर आप मन ला यूट्यूब चैनल में आप मन पूरा ला सुन सकत हा। और आज के विषय हवे खरीफ फसलों में खरपतवार प्रबंधन। संगवारी हो, खरीफ फसल जैसे कि अभी चलत हवे जोन में कि धान है, मक्का है, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग के खेती हमर छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने में एहर करे जाते ए समय में, तो ए फसल मन के संग खेत में लगातार का होते खरपतवार घलो बहुत उगते। खरपतवार हर मन चाही घास फूस आए जोन हर की फसल के संग पानी, खाद, पोषक तत्व, हवा और सूरज के रोशनी बर प्रतिस्पर्धा करते। एकर ले फसल के जो बढ़वार है एहर रुक जाते और फसल के उत्पादन में कमी आती। एकर खातिर बर खरीफ फसल में सही समय में खरपतवार प्रबंधन करना अब बड़ जरूरी होते। खरपतवार फसल के शुरुआती अवस्था में सबले ज़्यादा नुकसान करते। अगर खेत में खरपतवार ज़्यादा हो जाते तो फसल के पौधा कमजोर हो जाही, काबर की माटी के जो पोषक तत्व तो हवे एला खरपतवार ले लेते। खरपतवार मन कई किस्म के कीड़ा और रोग के आश्रय स्थल घलो बना सकत हैं। एकर खातिर बर फसल बोए की पहली खरपतवार के नियंत्रण करना अब बड़ जरूरी हवे। खरपतवार नियंत्रण के तरीका में यांत्रिक विधि सर्वोत्तम हवे। किसान मन खेत में निंदाई गुड़ाई करके खरपतवार ला निकाल सकत हैं। धान के खेत में कोनो खुरपी और कोनो जगह में कृषि यंत्र के उपयोग करके खरपतवार मन ला हटा सकत हैं। कतार में बोए फसल में यांत्रिक निंदाई करना आसान होते। समय रहते खरपतवार हटा दे ले फसल के पौधा मन ला पर्याप्त पोषक तत्व और नमी

घलो मिलथे। तो संगवारी हो, ए चीज ला आप मन ध्यान रख सकत हो, काबर की हमन जैसे कोई भी फसल लगाए हवन तो फसल में खरपतवार अगर होते तो मिट्टी के जो पोषक तत्व तो है ओकर पोषक तत्व तो ला खरपतवार ले ली ही तो हमर पौधा हर कमजोर हो जाते। तो एकर खातिर बर हमला सही समय में एकर प्रबंधन करना जरूरी होते और बहुता संगवारी मन ए चीज ला जानत हवे करत हवे। और एकरे संगे संग आज विषय भी रही महिला अधिकारों की पैरोकार इस्मत चुगताई जयंती। संगवारी हो, भारत के प्रसिद्ध लेखिका रहीन एमन और कहानीकार और महिला अधिकारों के मजबूत आवाज रहीन। ओकर जन्म आज ही के दिन यानी कि 21 अगस्त 1915 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में होए रही। ओकर लेखनी में समाज के रूढ़िवादी सोच, महिला मन के समस्या और लैंगिक असमानता और स्वतंत्रता के सवाल माने प्रमुख रही। तो एकरे संगे संग संगवारी हो, आप मंठिले विदा लेके समय होगी से तो अपन संगवारी ला देव विदा। जात जात जमो संगी संगवारी मल्ला आप मन के मयारू संगी सुशील प्रधान को तिले राम राम जय जोहार।

0: चौपाल कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: और सरायपाली केंद्र है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का जी रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए, भिलाई में संपन्न अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन की रेडियो रिपोर्ट। आलेख वाचन और प्रस्तुत करता है प्रकाश उदय।
2: श्रोताओं के समर्पण और सम्मान का प्रतीक अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन गत 19 और 20 अगस्त को भिलाई नगर में आयोजित किया गया। श्रोताओं के इस महाकुंभ में 18 राज्यों के रेडियो श्रोताओं ने भाग लिया, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाओं ने भी शिरकत की। 20 अगस्त को आयोजित मुख्य समारोह दुर्ग सांसद माननीय श्री विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। आयोजन के आरंभ में प्रख्यात लोक गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को सामूहिक श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात आकाशवाणी रायपुर के प्रसारकों का स्वागत किया गया।
3: कि आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपने ही हमें मशहूर किया है और आपने ही आवाज की ये दुनिया सब लोगों तक पहुंचाई है। जैसे हिंदुस्तान में घूमता है हर किसी को चाहिए पानी, वैसी है अमृत तुल्य हमारी आकाशवाणी। तो संतोष जी के लिए इतना ही। गगन की शान सितारे और चमन की शान बहारे है, हमारी शान बस यही है कि आज आप यहाँ पधारे है, आज आप यहाँ पधारे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी बात रखूंगा, बस इतना ही। सबके चेहरे में वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से रात नहीं होती। सबके चेहरे में वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से रात नहीं होती। यूं तो मिलते हैं लोग बहुत सारे अक्सर दुनिया में, पर क्या करे, जो दिल के करीब होते हैं उन्हीं से तो मुलाकात बार बार नहीं होती, उन्हीं से तो मुलाकात बार बार नहीं। जय श्रोता जगत, जय श्रोता जगत, जय श्रोता जगत।
4: धन्यवाद विकास जी।
2: इसके बाद माननीय सांसद श्री विजय बघेल ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा,
5: भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे कर्म क्षेत्र, मेरी जन्मभूमि इस भिलाई दुर्ग के पावन धरती में पूरे देश भर से, देश के कोने कोने राज्यों से हमारे रेडियो श्रोता संघ के समस्त सदस्यगण, पदाधिकारीगण यहाँ पर भिलाई में आप सब अखिल भारतीय रेडियो श्रोता संघ सम्मेलन में आज उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ के एक सेवक होने के नाते, यहाँ के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ दिल से, आत्मा से। आज वाकई में इसलिए भी बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि मैं चाहे छोटे स्तर का आपके रेडियो श्रोता संघ का कार्यक्रम हो, यहाँ कोई

0: छोटी संगोष्ठी हो, मैं लगभग प्राय जगह पहुंचता हूं और ये मुझे अच्छा लगता है। और हमारे दोनों यहां मंच में बैठे सम्मानी जन, आदरणीय अशोक बजाज जी संरक्षक हैं, साथ ही साथ हमारे परसराम साहू गुरु जी जो राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, और मेरा गांव उनका गांव आस पड़ोस है, 1 किलोमीटर में हम दोनों का गांव है, इसलिए सालों सालों से प्रगाढ़ता उनसे है। सिर्फ रेडियो श्रोता संघ के पदाधिकारी के रूप नहीं या मैं सांसद के रूप में नहीं, एक आत्मिक पारिवारिक संबंध आदरणीय परसराम जी से है। और मैं बचपन से उनके जो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनसे हम सब प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, चाहे वो आदिकाल से लेके अभी तक के सिक्के की बात हो कलेक्शन करने की, चाहे डाक टिकट कलेक्शन की बात हो, चाहे जो रेडियो के अनेक प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी बात हो, ग्रामोफोन, वो सब का कलेक्शन एक अद्भुत है इनका। ऐसे आदरणीय परसराम साहू जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी सम्माननीय अन्य पदाधिकारीगण और मंच संचालन कर रहे भाई तारक जी, उपस्थित पत्रकार बंधुगण, आप सबका एक बार फिर से मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादाजी तो एक बड़ा रेडियो लेकर आए, वो जाली वाला रेडियो हुआ करता था पहले, उसको एक जगह टेबल में वो रखे रहता था। लेकिन जिस दिन वो बांस गीत आता था छत्तीसगढ़ का, तो उसको बाहर में रखवाते थे, क्योंकि उस दिन पूरे गांव भर की भीड़ लगती थी उसे सुनने के लिए, और लोग देख के आश्चर्यचकित रहते थे ये क्या, कहां से आवाज आ रही है। मतलब ऐसे उपकरण भी है जिससे इस तरह के संगीत गीत, इस तरह के बोली भाषा और इस तरह के आयोजन का प्रसारण किया जा रहा है। आकाशवाणी चलती थी और धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो उसका स्वरूप बदलता गया, और जब फिर बड़े हुए तो टीवी आया, अनेक प्रकार के और इंस्ट्रूमेंट आए, लेकिन रेडियो की महत्ता कम नहीं हुई। आज भी आप जैसे लोग उसकी महत्ता को समझते हैं, आप उस कालखंड को याद करते हैं रेडियो सुन के, हमारे पूर्वज उसको सुना करते थे। मतलब हमारी ये मानव सभ्यता में जब इस तरह के आविष्कार हुए, उसके रक्षक और उसके संरक्षक आप सब बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज राष्ट्रभर से आप सब भाई बहन यहाँ आए हैं, इतनी दूर से आए हैं एक दूसरे से परिचय करने, एक दूसरे से मिलने, कि कौन कौन प्रदेश में कौन कौन लोग हमारे इस जो संस्था में सदस्य हैं और जो रेडियो आज भी सुनते हैं, आज भी सुनता है। मैं भी अपने घर में रखा हूँ, दिल्ली में भी एक रेडियो रखा हूँ, यहाँ भी एक रेडियो रखा हूँ। तो आज मुझे फिर से एक बार आप सब के बीच में आने का अवसर मिला, और आप सब हमारी भिलाई नगरी को देखे भी, यहाँ हैं भी, जो समिति के पास बन पड़ी आप सबके लिए व्यवस्था किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप सब संतुष्ट होंगे। बाकी अच्छे अनुभव आप सब साथ लेके जाइएगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और आप सब अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश दे रहे, ताकि आपके बाद हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को लगातार चलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस आत्मीय सम्मेलन के खुले मंच को बेहद उत्साह के साथ श्रोताओं ने साझा किया और अपने अनुभव सुनाए।
2: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजी नगर से जगन्नाथ बसय बंधु बात कर रहा हूँ।
3: अच्छा। कितने साल से रेडियो से जुड़े हुए?
2: ये रेडियो तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, मेरे माता पिता के गर्भ से सुन रहा हूँ। ग्रामोफोन था हमारे पास, बड़े बड़े फिलिप्स हॉलैंड के रेडियो से बड़े भैया के पास, वो सुनते सुनते सुनते सुनते अब हम 73 साल में पहुँच रहे हैं। अच्छा। ऐसा लगता नहीं कि 73, ऐसा लगता है 16 साल का छैला है।
3: आज यहाँ भिलाई में अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन जो हो रहा है, यहाँ तक पहुँचना और यहाँ उन श्रोताओं के साथ रूबरू होना जिनका नाम कभी रेडियो में सुनते थे, आज उनसे मुलाकात हुई, आपको कैसा लग रहा है?

0: बहुत अच्छा, न भूतो न भविष्यति। हमारे साहूजी साहब जो है, गुरुजी जिनको कहते हैं, उन्होंने मेरे को बोला था अहिल्या नगर में 2025 के समारोह सम्मेलन में, जगन्नाथ भाई आपको आना ही होगा। अब ही बोले तो विशेषण है, मैं बोला तो फिर आइए बोले। मैंने सब काम छोड़ के वहाँ से निकला, 900 किलोमीटर से मैं कार से आया हूँ। क्यों आया? केवल प्रेम। जा घट प्रेम मन संचरई, सो घट जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस ले तब बिन प्राण। प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए बोलते, या 3 मिनट का गाना बजता है। तो वो हमारे मित्र ने मुझको कहा आना ही होगा छत्तीसगढ़ के भूमि में, तो मैं उनके कहने पे और श्रोताओं के सब आने, जितने भी हजारों श्रोता है हमारे, सबके दर्शन, साक्षात्कार, रूबरू प्रत्यक्ष मिलन, इसके लिए मैं खास आया हूँ।
1: तो इसे कैसे देखते हैं आपकी आधुनिकता की होड़ में, जहाँ आज सोशल मीडिया अपनी पैठ बना रहा है, बना चुका है, वहाँ रेडियो कैसे जीवित है?
0: अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो मन की बात रखी है ना, हर रविवार को बोलता है प्रधानमंत्री जी, ने मृत प्राय रेडियो में जान फूंक दी है, जिसके कारण हर सप्ताह में लोग मन की बात से एक एक विषय पे अपने मंथन होता है। उसके लिए लोगों ने हजारों हजार लाखों लाख रेडियो लिए है, जो जिंदे हो चुके रेडियो, जो मृत प्राय पड़े थे। रेडियो का आनंद अलग आता है, मोबाइल में अलग आता है, मगर रेडियो के अंदर जो मिठास आती है वो मोबाइल में नहीं आती। और रसिक श्रोता जितने भी हमारे भारत भर में, वो रेडियो ट्रांजिस्टर के ऊपर ही गाने सुनेंगे, मोबाइल पे नहीं सुनेंगे। और पुराने रेडियो में आजकल एक FM की किट आती है, हम वो हमने मेरे रेडियो में किट बिठाए हूँ, उसमें पूरे 100-230 FM आते हैं। हम बटन दबा देते हैं, मगर रेडियो में से ही FM से सुनते हैं हम आवाज़। रेडियो को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा बचपन चले गया, अभी और 30 साल हमारे बाकी है, 103 साल हम अभी आखिर तक रेडियो को हम साथ छोड़ने वाले नहीं है। तो इस रेडियो को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो जुड़े हैं, इतने श्रोता जो आए हैं, ये बने हट्टी से हमारे भाई आए वाले, महालिंगपुर से आए वाले, कितने दूर दूर से लोग आए हैं, क्यों आए? रेडियो श्रोता सम्मेलन, सबका मिलन मधुर, ये श्रोता जगत है। यहाँ कोई संप्रदाय नहीं है, एक ही नारा चलता है, रेडियो जगत जिंदाबाद।
1: छत्तीसगढ़ के जो श्रोता संघ है, इनसे आपकी मुलाकात यहाँ हुई है, इससे पहले पिछले साल बुलढाणा में शायद हुआ था एक सम्मेलन, तो वहाँ भी आपकी मुलाकात हुई। तो छत्तीसगढ़ के जो श्रोता हैं, उनसे मिलके आपको कैसा लगा और उनके लिए क्या संदेश छोड़ के जाएंगे?
0: छत्तीसगढ़ बोले तो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ बोले तो धान का कटोरा है। भोजन के अंदर अगर भात नहीं रहेगा, चावल नहीं रहेगा, तो परिपूर्ण भोजन नहीं होता। ये वो छत्तीसगढ़ है, जब भी हम चावल खाते हैं तो छत्तीसगढ़ आह बोल के खाते हैं, करके हम यहाँ पधारे हैं। और यहाँ के लोग बड़े प्रेम से बात करने वाले हैं, विनय, शालीनता, एकदम जिसके देखे चेहरे पे ना प्रसन्नता रहती है। ये छत्तीसगढ़ की खास बात है, धान का कटोरा। फूलों की डाली पर शबनम गिरने से डाली नम नहीं होती, फूलों की डाली पे शबनम गिरने से डाली नम नहीं होती, हो जुदाई लाख पर मोहब्बत कम नहीं होती। श्रोता जगत जिंदाबाद।
2: अशोक जय भाई, मैं औरंगाबाद से हूँ।
1: तो ये जो श्रोता सम्मेलन यहाँ हो रहा है, श्रोता सम्मेलन भिलाई में हो रहा है, यहाँ आकर कैसा लगा?
2: साहू साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उनका जो एडजस्टमेंट है, और जो अतिथि देवो जो बोलते हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रहा है, हम तो खुश हो गए सर।
1: तो सारे श्रोता जो संघ यहाँ पर आए हैं, किन किन श्रोता संघों से आपकी मुलाकात हुई, जिनसे आप, जिनके सिर्फ आपने नाम सुने थे और यहाँ आकर मुलाकात हुई?
2: यहाँ आकर हमारी मुलाकात श्रीकांत फड़, बाद में फिर मास्टर फड़ जो थे, RG फड़, उनके जो बच्चे है चिरंजीव है, वो श्रीकांत फड़ से बात हो गई।
3: मैं सतीश वैरालकर, दैनिक दिव्य मराठी, दैनिक भास्कर ग्रुप, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से हूँ, और यहाँ हिंदी गीत और हिंदी जो गायन है, पत्रकारिता से जुड़ा होने की वजह से मुझे बड़ी रुचि है गायन के क्षेत्र में। हम आकाशवाणी हमारे यहाँ भी है, आपके छत्तीसगढ़ आकाशवाणी के भी हम बहुत बड़े फैन रहे हैं। जब भी कभी हिंदी चैनल हमको चलाना पड़ता है आजकल, तो हम छत्तीसगढ़ होते हैं, मध्य प्रदेश का भी सुनते हैं, ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं दिल्ली का, तो इस वजह से हमें बड़ी रुचि इसमें प्राप्त हुई। और हमारे दोस्त जो है बसई बंधु, छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसई बंधु, इनकी बड़ी कृपा रही है कि ये कई सालों से हमारे पीछे थे और आज हम इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला है।
1: अभी जन संचार का जो माध्यम है रेडियो है, इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
3: आज भी देखिए, हमारा देश जो है इसे देहातों का देश कहा जाता है, 70% आबादी आज भी देहातों में रहती है। आज से 25-40 साल पूर्व हम देखते हैं तो रेडियो एक ही जरिया ऐसा था जो कि हर

0: एक इंसान को एक इंसान दूसरे इंसान से जोड़ा जाता था, और मैं समझता हूँ आज वो स्वर्णिम जो युग है फिर से आज लौट रहा है। लोग इस थकान भरी धका धकी की जिंदगी जो है, भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से कहीं ना कहीं मिजाज चाहते हैं, और इसी के मैं बोलता हूँ कि आज भी जो आकाशवाणी की लोकप्रियता बढ़ी है, विविध भारती की लोकप्रियता बढ़ी है, ऑल इंडिया रेडियो की बढ़ी है, तो यही एक कारण है कि लोग फिर से आज इधर जुड़ रहे हैं।
1: आज हमारे साथ है डॉक्टर
2: श्रीकांत आर जी
1: फड़, ये महाराष्ट्र से हैं। तो अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन आज जो हुआ है भिलाई में कला केंद्र में, ये भी आए हैं महाराष्ट्र से, तो इनसे जानेंगे कि ये जो यहाँ का आज माहौल है कैसा है और यहाँ आकर आपको कैसा।
3: आज का जो हमारा 20 अगस्त का जो सम्मेलन है वो सही में हमारा एक कुंभ मेला रहता है। हर साल हम सभी श्रोता सम्मेलन में जाया करते थे, और जो ऊर्जा हमें सम्मेलन से मिलती है वो हमारी ऊर्जा पूरे साल भर चलती है। आज जो यहाँ पर आयोजन किया है हमारे वरिष्ठ श्रोता भाई परसरम साहू गुरु जी और दूसरे उनके साथी तारक सदेव जी, मुकेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और हम सभी श्रोता इस कार्यक्रम के संबंध में बहुत दिनों से प्रतीक्षित थे, और आज यहाँ आकर बड़ी खुशी हो रही है। तो ये सम्मेलन का जो हमारा हर साल का जो एक ऊर्जा है वो हमें काफ़ी कुछ देती है। हर तरह के श्रोता यहाँ पर, हर स्टेट से श्रोता आता है और सबकी मुलाकात होती है। जो लोग अनजान हमें, हम रेडियो पर उनका नाम सुनते हैं लेकिन प्रत्यक्ष उनको देखकर बड़ा ही आनंद मिलता है, भी हम इस श्रोता सम्मेलन से हमें ऊर्जा मिलती, यही मुझे कहना है।
1: अपना नाम बताएं।
4: दिनेश कुमार वर्मा, ग्राम रिंगनी।
1: यह श्रोता सम्मेलन आज यहाँ हो रहा है, तो इस श्रोता सम्मेलन में आप उपस्थित हुए हैं, तो अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन है, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगता है?
4: जिन श्रोताओं का नाम रेडियो में सुनते थे आज सभी लोगों से साक्षात मुलाकात हो रही है, जिन अनाउंसरों का मधुर आवाज़ सुनते थे आज उनसे सामने मुलाकात हो रही है। ये कार्यक्रम हर साल पूरे इंडिया में होता है, इस साल भिलाई छत्तीसगढ़ में हो रहा है, सभी श्रोताओं से मिलकर बड़ी खुशी हुई।
1: जी जी, और किन किन श्रोता संगठनों से आपकी मुलाकात हुई? जैसे बोला आप कह रहे हैं कि रेडियो में ही सुना है, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, तो छत्तीसगढ़ के बाहर के किन किन श्रोता संगठनों और श्रोता संघों से आपकी मुलाकात हुई?
4: हर साल श्रोता सम्मेलन होता है, उसमें कई जगह मैं गया हूँ, उसमें हमारे श्रोताओं से मुलाकात हुई है, जैसे पांडे जी हैं, रवि कुमार राहुल जी हैं, बहुत सारे श्रोता हैं जिनसे मुलाकात हुई है, जो सम्मेलन में मुलाकात होती रहती है।
1: आप अपना?
5: सर जी नमस्कार, मैं रेवाराम साहू बोला हूँ, दहिहान माधव बाजार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। क्योंकि अभी अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के कार्यक्रम है 2026 में, वो कार्यक्रम अपना छत्तीसगढ़ में हो रहा है सर जी, यह भिलाई स्थान है, भिलाई में, दुर्गा भिलाई में, तो श्रोता मित्रों में उनसे मुलाकात करवे ना तो बहुत अच्छा लगता सर जी, काबर की फोन से बातचीत हो रही से लेटर के माध्यम से सुनत रहने की को नाम, अब संवाद आपके आमने सामने मुलाकात होवे ना कंपेयर मन से या श्रोता मित्र से, तो बहुत खुशी लगते सर जी। और श्रोता दिवस के पावन अवसर पे आकाशवाणी परिवार है और श्रोता संगवारी मल्ला बहुत बहुत बधाई, गाढ़ा गाढ़ा चेहरा चेहरा टुकना टुकना बधाई सर जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बताएं, आप करनाल से आए हैं, तो छत्तीसगढ़ से काफ़ी दूर है करनाल, हरियाणा प्रदेश में है, तो आज आप यहाँ पर आए हैं श्रोता सम्मेलन में, कैसा लग रहा है?
6: सबसे पहले तो मैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा की ओर से सबको अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन, ये छत्तीसगढ़ श्रोता जो ग्रुप है वो करवा रहा है, वो बहुत बधाई का पात्र है। ये बहुत ही एक बेहतरीन एक स्टेज है सारे भारत के श्रोताओं को एक मंच पे इकट्ठा करने की, इसमें सब लोग आपस में मिलते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, और इससे भाईचारा भी बढ़ता है। 2022 में कोरोना के बाद जो पहला अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन था, वो स्नेहित रेडियो लिसनर क्लब का मैं अध्यक्ष हूँ, ज्ञान भूषण शर्मा, हमारी अध्यक्षता में ही वो जो करनाल में हुआ, 2023 में हमने पटियाला में करवाया, उसके बाद बुल्ढाना में हुआ 24 में, 25 में बागपत में, और आज भिलाई स्टील नगरी में हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितनी

0: बहुत अच्छा लगा भिलाई आकर, क्योंकि सपना था, इधर कभी आए नहीं थी इस रूट पे, तो भिलाई आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो कल्चर है, जो बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, मतलब मन गदगद हो गया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विनोद वंडलकर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर से हूँ।
3: यहाँ जो श्रोता सम्मेलन जो हो रहा है, अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन, ये कैसा लग रहा है और भिलाई की धरती पे आयोजन किया जा रहा है, यहाँ कहाँ कहाँ से जो है श्रोता सम्मेलन के लिए, श्रोता संगठन से लोग आए?
2: सबसे पहले ये सम्मेलन रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ है समझो, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश और पूरे प्रदेश में फैलते हुए पूरा भारत, मैंने भारत भर के श्रोताओं लोग को इकट्ठा होना शुरू हुए, और हर साल 20 अगस्त के दिन निर्धारित किया गया कि इस दिन रेडियो श्रोता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, श्रोताओं एक दूसरे से मेल मुलाकात होते हैं, इनमें वही श्रोता होते हैं जिनका नाम रेडियो पर हमेशा आते रहता है।
4: मध्य प्रदेश के सागर से पधारे श्रोता चंद्रेश गौहर ने इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए बताया।
5: सर, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की इस धारा को प्रणाम करता हूँ, और यहाँ आकर मुझे बहुत एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई, जो रेडियो से सुनने के बाद मुझे जो अनुभूति मिलती थी, आज देश भर के तमाम मेरे जो श्रोता साथी यहाँ पर मौजूद हुए हैं उनका देखकर मुझे एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। रेडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया, जहाँ तक मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें रेडियो का एक बहुत बड़ा, बहुत अमूल, बहुमूल्य योगदान है। रेडियो ने मुझे दुखों में हंसना सिखाया है और सुखों में मुस्कुराना सिखाया है, ऐसा है मेरा रेडियो। रेडियो को मैं कभी मनोरंजन का माध्यम नहीं मानता, रेडियो मेरे लिए सूचना, ज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम प्रकार की हमें सुविधाएं घर बैठे ही हम लोग को मिल जाती हैं, तो इससे सशक्त माध्यम रेडियो को मैं अन्य किसी उसको नहीं मानता, मेरा ऐसा मानना है।
4: वही खंडवा के श्रोता योगेश गुजराती ने कहा।
6: खंडवा से योगेश गुजराती बोल रहा हूँ, और इस वर्ष 2026 का जो राष्ट्रीय सम्मेलन भिलाई में आयोजित किया गया है, बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है। क्योंकि मैं 12 वर्ष से लगभग इस रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, रेडियो सिलोन पे जब हम सुनते थे तो हमारे वरिष्ठ जो श्रोता कार्यक्रम सुनते थे तो उनके पीछे बैठ के मैं रेडियो सुनता था, और उनके पत्र वगैरह जो है लिफाफे में पैक करना, और बाय एयर वो SLBC श्रीलंका जाते थे, उसको देख देख के मेरे मन में भी बहुत रेडियो के प्रति प्यार जगा असीम, और धीरे धीरे करके रेडियो से फरमाई से भी भेजना शुरू कर दी। तब से अभी तक मैं रेडियो से जुड़ा हूँ, और 2018 में इसी तरह का राष्ट्रीय आयोजन हमारे खंडवा मध्य प्रदेश, क्योंकि किशोर दा की जन्मभूमि है, माखन दादा की जन्मभूमि है, श्री दादाजी महाराज की जन्मभूमि है, और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनकी कर्मभूमि है। तो हमारा जो खंडवा शहर है वो सब दादाओं से मिलकर बना है, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, गायन के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, हमारा खंडवा का नाम बहुत सदा इन बातों में अग्रणी रहा है। तो मैं मध्य प्रदेश से भिलाई के इस छत्तीसगढ़ के श्रोता सम्मेलन में वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और यहाँ की आयोजन समिति को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार जानदार कार्यक्रम आयोजित किया, और अगले वर्ष भी शायद हो सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में आयोजन करने की चर्चाएं चल रही है, कभी ऐसा होगा तो जरूर हम इसकी सूचना आपको देंगे।
4: इसके बाद रंगारंग प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। पेश है एक झलक।

0: कार्यक्रम के अंत में आकाशवाणी रायपुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री पंकज मेश्राम ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।
1: यहाँ के ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं कि मैं भिलाई का ही निवासी हूँ और तारक भाई से मेरा बचपन से नाता है, हम दोस्त रहे हैं और श्रोता के तौर पर तो बाद में उनसे पहचान हुई, लेकिन मेरी जान पहचान उनसे बचपन से रही है। और इस आयोजन के बारे में मुझे कम से कम 2 महीने पहले ही सोम कुंवर जी और तारक भाई से पता चल गया था कि ये आयोजन 19 और 20 अगस्त को होना है और भिलाई में इसके वेन्यू तय किए जा रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ को पुनः ये मौका मिला कि अखिल भारतीय स्तर का श्रोता सम्मेलन हम भिलाई में आयोजित करें, जहां देश भर से हमारे जो श्रोता साथी हैं वो आ सकें। और इस आयोजन को सफल बनाने में हमारी आयोजन समिति के सारे सदस्यों ने जो दिन रात मेहनत की, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ासतौर पे अशोक बजाज साहब, यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं बधाई के हकदार हैं। दूसरा, आज जब ये 2 दिन का आयोजन संपन्न होने जा रहा है और आप 18 राज्यों से जो हमें इस बात की सूचना मिली है कि श्रोता साथी इस आयोजन में आए हैं और जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है, आज इतनी भारी तादाद को देखते हुए एक बात बड़े यकीन और उम्मीद से की जा सकती है। लोग अक्सर हमसे ये कहते हैं कि क्या आज भी रेडियो सुनने वाले लोग मौजूद हैं। आपकी इतनी बड़ी तादाद में ये उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि यदि प्रमाण इस बात का चाहिए, सबूत चाहिए, तो वो यहाँ आकर एक बार देख लें कि कैसे लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने खर्चे से, देश के कोने से, कोने कोने से इकट्ठा होकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। और मैं इस मौके पर एक दो बातें और भी करना चाहता हूं कि रेडियो ने समय के साथ अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। अब ट्रांजिस्टर रेडियो के अलावा हम मोबाइल ऐप के जरिए भी रेडियो के कार्यक्रम सुन सकते हैं। दूसरा, कई हमारे श्रोता साथी हैं जिन्हें इस बात की शिकायत है कि न्यूज़ ऑन AIR पर ये कार्यक्रम थोड़े से साफ नहीं सुनाई दे रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वेब्स का वो सहारा लें, वहाँ पर उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आती है, आप इन कार्यक्रमों का मज़ा दुगने उत्साह से ले सकते हैं। साथ ही साथ आकाशवाणी के अलावा रेडियो के भी कार्यक्रम वहाँ पर सुने जा सकते हैं। फिर से यहाँ पर जितने लोग आए हैं प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप सब ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, पुनः आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिया। धन्यवाद एक बार पुनः।
0: इस श्रोता सम्मेलन में श्रोताओं के साथ साथ प्रसारकों और आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ भिलाई नगर में संपन्न अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन की ये रेडियो रिपोर्ट अब समाप्त होती है। संपादन रमाशंकर, आलेख और प्रस्तुति प्रकाश उदय।
2: FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है।

0: दिल तेरा आशिक। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और मुकिल अग्रवाल की आवाज में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

जीना मरना तेरे संग, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल

0: कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया, कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
5: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन

0: के लिए अलग से रखा गया है और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा

0: बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.
3: सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं SD बर्मन की आवाज में बंदिनी फिल्म के गाने के साथ। शैलेंद्र के हैं बोल और SD बर्मन की है तर्ज।
4: ओरे माजी

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में अनपढ़ फिल्म का गाना। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में प्रोफेसर फिल्म का गाना। हसरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
1: आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध क्या गाना। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम ससुराल।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए अब सुनिए एसडी बर्मन की आवाज में सुजाता फिल्म का गाना। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में मुगल-ए-आज़म फिल्म से। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म से गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थीं। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कर...

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

जहां आरा आया सावन झूम के और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थीं। और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का ये गाना

0: कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।
1: Ha ha ha ha!

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

0: 1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।
1: कोई बुढ़ा लंबो लंबो।

0: दोस्तों, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकु कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।
1: हाँ।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था।
1: विविध भारती कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: विविध संगीत में ये थे नुसरत फतेह अली खान और साथी।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: हेलो रायगढ़, क्या आप भी एक नीट एस्पिरेंट हैं और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं? तो मार्गदर्शक लेकर आ रहा है आपके अपने शहर रायगढ़ में एक फ्री MBBS एडमिशन गाइडेंस सेमिनार, जहां हम आपको बताएंगे MBBS एडमिशन की सारी जानकारी इंडिया और अब्रॉड के कॉलेजेस के बारे में, जैसे कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, लो बजट ऑप्शन एंड कम्प्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो हमें ज्वाइन कीजिए इस रविवार 23 अगस्त को होटल रेड क्वीन में सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक।
5: कॉल करें 7049304956 एवं 6265230652 पर।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर।

0: ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: कार्यक्रम विविध संगीत में लीजिए आप सुनिए अहमद अनीस की लिखी गजल आशा भोसले और गुलाम अली की आवाजों में।

लीजिए अब सुनिए, एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल को, गीतकार हैं नक्श लायलपुरी।

नुसरत फतेह अली खां और साथियों के बाद आइए अब सुने आशा भोसले और गुलाम अली की आवाज में अहमद अनीस की लिखी यह गजल।

आशा भोसले और गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ ही विविध संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। सबसे पहले आइए सुने मोहम्मद रफी और मुकेश को आनंद बख्शी का लिखा गीत है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को हमने लिया है फिल्म धर्मवीर से।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: अगला गीत आइए सुने, साहिर का लिखा हुआ, संगीत दिया है चित्रगुप्त ने, और फिल्म वासना के लिए आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

उपकार फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मुकेश को। लीजिए अब सुनिए फिल्म भीगी पलकें का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीतकार हैं एमजी हसमत और संगीत तिलक राज थापर का है।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुने फिल्म आशिक में मुकेश को।

फिल्म आशिक के इस गीत के साथ ही रजनीगंधा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संस्कार

0: साधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth.